0: पुकारे आजा आजा रे तुझको मेरा।
1: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है. समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ हैं. संध्या नमस्कार आपको आशिता.
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार. आज 13 सितंबर रविवार का दिन, इस पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सभी को मेरा प्रणाम. मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है. 2026 के पहले 6 महीनों में 3431 शादियां दर्ज की गई. बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगे हैं. और 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र. विचारों का आदान प्रदान, अपनी साझा विरासत और पहचान पर चर्चा, नई पीढ़ी की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन. गुपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर जोड़ा है. अब ये सम्मेलन यादों, सम्मान और उपलब्धियों के साथ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज और इस सिलसिले में आज विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है कालबास में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की सांस्कृतिक केंद्र में. नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें पुलिस से लेकर इस नई एजेंसी को दी जा सकती है. विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थानों की शुरुआत होगी. बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पैक लॉन्च किया है. इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है. और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच अथर्वा समूह के सदस्य पारंपरिक जागरण नृत्य की तैयारी में जुटे हुए हैं. आज के हमारे समाचार बुलेटिन में हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर इस संदर्भ में आएंगे. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोगों के घायल होने की खबर मिली है, जिनमें एक की हालत गंभीर है. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन फ्रांसीसी मीडिया में इसे साबोताज की संभावित घटना बताया जा रहा है. उधर यूक्रेन में रशियन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के समारा इलाके में सैन्य सामान बनाने वाली एक कारखाने पर ड्रोन हमला किया है. तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला.
2: RM3 Radio.

0: सुभानल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशरियात सबाल खैर में हम आप तमाम सामीन का खुलूस व मोहब्बत के साथ खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से हैं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के दौरान हम हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आइए सबाल खैर का आगाज़ आदत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकद्दस किताब कुरान करीम की चंद आयत मुबारका की तिलावत से करते हैं। समाअत कीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
2: अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला

बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जे में सारा मुल्क और वो हर चीज पर कादिर है, वो जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है, और वही इज्जत वाला बख्शिश वाला है। जिसने सात आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्या फर्क देखता है? तू निगाह उठाकर देख तुझे कोई रखना नजर आता है, फिर दोबारा निगाह उठा, नजर तेरी तरफ नाकाम पलट आएगी थकी मांदी।

0: يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
1: और बेशक उनसे अगलों ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा इनकार, और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदे न देखे पर फैलाते और समेटते, उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा रहमान के, बेशक वो सब कुछ देखता है. या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है कि रहमान के मुकाबले तुम्हारी मदद करे, काफिर नहीं मगर धोखे में. या कौन सा ऐसा है जो तुम्हें रोजी दे अगर वो अपनी रोजी रोक ले, बल्कि वो सरकश और नफरत में ढीठ बने हुए हैं.

तो क्या वो जो अपने मुंह के बल ओंधा चले ज्यादा राह पर है, या वो जो सीधा चले सीधी राह पर? तुम फरमाओ वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंख और दिल बनाए, कितना कम हक मानते हो। तुम फरमाओ वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ उठाए जाओगे। और कहते हैं यह वादा कब आएगा अगर तुम सच्चे हो? तुम फरमाओ ये इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तो यही साफ डर सुनाने वाला हूं।

0: फिर जब उसे पास देखेंगे काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे फरमा दिया जाएगा यह है जो तुम मांगते थे। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो वो कौन सा है जो काफिरों को दुख के अजाब से बचा लेगा। तुम फरमाओ वही रहमान है, हम उस पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा किया, तो अब जान जाओगे कौन खुली गुमराही में है। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें पानी ला दे निगाह के सामने बहता।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की। कुरान सब्र, शुक्र, सच्चाई, माफ़ी, रहम और दूसरों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देता है। कुरान हमें मौत, कयामत, जन्नत और जहन्नम की याद दिलाता है और नेक आमाल की तरफ मुतवज्जो करता है। जो शख्स कुरान पढ़ता, समझता और उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करता है उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में बेहतर रहनुमाई मिलती है और वह अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करता है। मोहतरम सामीन, पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं।

मुख्तलिफ अबवाब बांध दे और इंसान को जो चाहिए इस दुनिया में और आखिरत में वो सब का सब उन दुआओं में मौजूद है। इस वक्त पूरी दुनिया जिस कर्ब में मुब्तला है और पूरी दुनिया को जिन आजमाइशों का सामना है, तो इसमें और ज़्यादा उन दुआओं की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए हमने इमसाल दुरूस के लिए दुआ की अहमियत, उसके फ़ज़ाइल और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ दुआओं को मौजू बनाया और इंशाअल्लाह एंड पर खुतब रब्बानी शहबाज़ लमकानी गौसे समदानी सैयदुना व सनदुना सैयद असनद अब्दुल क़ादिर अल जिलानी कुद्दसा सिहरुस सामी की एक ख़ास दुआ, वो इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सो अल्लाह पाक ने फरमाया, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। एक और मुकाम पे इरशाद हुआ, उदउ रब्बकुम तदर्रुअं व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक अल्लाह पाक हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता, हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। एक और मुकाम पे फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, और ए महबूब जब तुम से मेरे बंदे मुझे पूछें मेरे हवाले से सवाल करें, फ़इन्नी करीब, तो मैं नज़दीक हूँ, उजीब दावत दाई इज़ादान, और मैं दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे। और एक और मुकाम पे फरमाया, अफ़मन युजीबु अल-मुत्तर इज़ा दआह व यक्शिफु सूअ, आया वो जो लाचार की बात सुनता है जब उसे पुकारे और बुराई को दूर करता है। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के मुख्तलिफ़ चार मुकामात तर्जमा के साथ मैंने आपको बताए। इसमें पहले मुकाम का मैसेज ये है, उसमें ये पैगाम है कि जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उसे कबूल करता है।
نمبر دو، دعا کے آداب اللہ نے سکھائے،

0: कि हमें गिड़गिड़ाकर आहिस्ता आजिज़ होकर बेबस होकर अल्लाह से मांगना चाहिए और तीसरे मुकाम पर फरमाया कि मैं अपने बंदों के दुआ करने वालों के और सब के करीब हूँ और जब वो मुझे पुकारें अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह उनकी पुकार सुनता है। फिर चौथे मुकाम का पैगाम ये है कि वो शख्स जो मजबूर है, लाचार है, बेबस है, जब भी वो अपने बेबस होने का इजहार करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है और उसकी बुराई, उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। सो हमें हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर बीमारी के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह पाक अपने हबीब के तुफ़ैल हमारी दुआ को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: अभी आपने जामी मस्जिद पोटलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहुल आलिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां दीन, तक्वा और नेकी को बहुत अहमियत हासिल थी। आपका ताल्लुक गिलान के इलाके से था और आपका बचपन दीनी और अखलाकी तरबियत के माहौल में गुजरा। बचपन ही से आपके अंदर संजीदगी और नेकी की तरफ रग़बत पाई जाती थी। आपके वालिद का इंतकाल आपकी कम उम्री में हो गया था, जिसके बाद आपकी वालिदा और ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने आपकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आपकी वालिदा ने आपको सच बोलने, अल्लाह ताला से डरने और नेक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी। यही पाकीज़ा तरबियत आगे चलकर आपकी शख्सियत की मजबूत बुनियाद बनी। बचपन की अच्छी तरबियत ने आपके दिल में इल्म-ए-दीन से मोहब्बत और इबादत का शौक़ पैदा किया।

हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन आम बच्चों की तरह सिर्फ खेलकूद में नहीं गुजरा, बल्कि आपको इल्म और नेकी से ख़ास मोहब्बत थी। आप अपने बुज़ुर्गों की नसीहतों को गौर से सुनते और उन पर अमल करने की कोशिश करते थे। आपके दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बचपन ही से मौजूद थी। आपने अपने वक्त को मुफीद कामों में गुजारने की आदत पैदा की, दीनी तालीम हासिल कर

आपकी ज़िंदगी का अहम मकसद बनता गया। आपके अंदर इल्म हासिल करने का ऐसा शौक़ पैदा हुआ जिसने आपको बाद में अपने वतन से दूर बगदाद जाने पर आमादा किया।

मोहतरम सामीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने इलाके गीलान में हासिल की। आपने कम उम्र ही से दीनी उलूम की तरफ तवज्जो दी। कुरान करीम की तालीम, इस्लामी आदाब और बुनियादी दीनी उलूम आपकी तरबियत का अहम हिस्सा थे। आप अपने असातिज़ा का एहतराम करते और इल्म को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। आप सिर्फ़ सबक याद करने पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि इल्म के मकसद को भी समझने की कोशिश करते थे। आपकी इब्तदाई तालीम ने आपके अंदर मज़ीद इल्म हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। यही मजबूत तालीमी बुनियाद आगे चलकर आपको एक अजीम आलिम, वाइज और रूहानी शख्सियत बनाने का ज़रिया बनी। इब्तदाई उम्र में इल्म से मोहब्बत इंसान की पूरी ज़िंदगी को रोशन कर सकती है। मोहतरम सामीन, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की कामयाबी का आगाज़ अच्छी तरबियत से होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम न दें, बल्कि अच्छे अखलाक भी सिखाएं। बच्चों को सच बोलने की आदत अपनानी चाहिए, असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए, कुरान करीम पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। जो नौजवान अल्लाह ताला की इताअत और इल्म की मोहब्बत को अपना लेता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। मोहतरम सामीन, सबा खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ हम इजाज़त भी तलब करते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही

Wave Arjisundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Seyaranga.

0: Montgomery Archisundaram.
1: Your music, your request.

0: आपूस केसर तोता पूरे
1: शियाड़े उंधियो खवा
2: बालोर पापड़ी ने मुठिया न भूलता
1: चौमासा मा भजिया तड़ो के

मनुष्य तमने व्यक्ति कोई दिवस ना मळे एटले कहेवाय ने के सारा संबंध नी सुंदरता एक बीजा नी भूलो सहन करवामां छे। तो चलो आपणे पण गुजराती गीतोमां आगळ वधीने सुंदर मजानुं आगलुं गीत लई लईए। हेमांगिनीना अवाजमां लेवामां आवेलुं अने आजे अमे तमारा माटे थोड़ा नवा गीतोनुं कलेक्शन लईने

वास्त आजे सान शक्ति ने बिजी एक तुच्छ प्रवृत्ति ने मन में लागणा मोकरे चढ़या जे जरूरत ही मन निशुद्धि ने मौनम निजे बाढ़ पड़ती खोड़ मरती न तिरे मौनम निशोड़ रही मौन।

न उगड़े जहर शब्दों ने फैन शब्दों च बेहा काटा नी जैम शब्दों च रहा कादर नी जैम बोल बतावा तो सांभड़ शिकोण बात सांभड़ो हवे रही मोन समझा से शब्दों नु षड्यंत्र अति मोन जे वो हवे कोई मंत्र

लड़ शब्द सगम जान मौनमलम वात दिल लकू पकड़ी कलम शब्दो समझे दुनिया भरम बड़े शब्द अहम जाने करम छे ख्वाहिश दिल मावात कहवानी हिम्मत न दी वात बोलवानी रहे आतुरता वात जानवानी दुनिया मजादर दो निमाने आपे आपद शब्दों ने वैन उगड़े जहर शब्दों ने वैन शब्दों चुपे हा काटा निजैम शब्दों जिरे हा कातर निजैम बोले बता वात सांबड़ शिकोण वात सांबड़ो हव रही मौन समझा से शब्दों

94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं, क्योंकि इन दिनों भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। हर जगह श्री गणेश का नाम, उनका गुणगान किया जा रहा है और गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं। तो एक बार आइए हमारे साथ श्री गणेश करते हुए, उनका नाम लेते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम गण गणपते नमः।

सनातन परंपरा में भगवान श्री गणेश का स्थान अत्यंत पवित्र और विशेष है। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी और मंगल मूर्ति के रूप में पूजते हैं। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्हीं का स्मरण किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी कृपा से कार्य में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और जीवन में मंगल का प्रवेश होता है।

गणेश जी का रूप भी अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है श्रोताओं। उनका हाथी का सर हमें विशाल सोच, ज्ञान और विवेक का संदेश देता है। उनके बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। उनका छोटा सा मुख याद दिलाता है कि कम बोलना और सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमता होती है। गणेश जी की सूंड उनकी समझदारी और अनुकूलता का प्रतीक है। सूंड की तरह हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढलना सीखना चाहिए। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। गणेश जी का बड़ा पेट भी एक सुंदर जीवन संदेश देता है। कहते हैं कि हमें जीवन के सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभव

और कठिन परिस्थितियों को धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। हर बात को दिल पर लेकर परेशान होने के बजाय उसे समझकर और संभलकर आगे बढ़ना चाहिए।

0: चंदन।
1: उनका वाहन मूषक अर्थात चूहा भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। मूषक को अक्सर चंचल मन और इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का उस पर विराजमान होना हमें सिखाता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं और चंचल मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब बुद्धि मन पर विजय पा लेती है तब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि के स्वामी भी कहा जाता है। रिद्धि समृद्धि का और सिद्धि सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक है। लेकिन गणेश जी हमें ये भी सिखाते हैं कि असली सफलता केवल धन या पद प्राप्त करने में नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता, संतोष और अच्छे कर्मों

गणेश जी की पूजा में दुर्वा, लाल फूल और मोदक का विशेष महत्व है। मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना जाता है। बाहर से साधारण लेकिन अंदर से मधुर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञान और भक्ति इंसान के जीवन को अंदर से मधुर बना देती है। श्रोताओं, गणेश जी के अनेक नाम हैं, गणपति, गजानन, एकदंत, लंबोधर, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति। हर नाम में उनकी एक अलग विशेषता और दिव्य रूप छुपा हुआ है। भक्त जब सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करता है तो उसे सिर्फ बाहरी विघ्नों से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर के विघ्नों, अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय को दूर करने की भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर श्री गणेश जी के चरणों में श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा, हमारे जीवन से अंधकार दूर करें, हमारे मन को शांति दीजिए, हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए।

हमारे कर्मों में पवित्रता दीजिए और हर कदम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश जी सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बुद्धि और मंगल लेकर आए। गणेश चतुर्थी की आप सबको मंगल कामनाएं। प्रणाम।

众朋友，几首优美动听的歌曲之后呢，又到了我们的养生专栏节目。今天我为大家带来的是汗蒸的益处。汗蒸是备

दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया और आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। पुएर्टो साबल के शुगर प्लांटर्स इलाके में आत्सु की टीम ने एक कार्रवाई करते हुए 37 वर्षीय महिला हेयर ड्रेसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से मेथामफेटामिन, सिंथेटिक कैनाबिनोइड, कैनाबिस और नशीले पदार्थों से जुड़े 63 एल्युमिनियम फॉइल तथा पेपर स्ट्रिप्स बरामद किए गए। इसके अलावा 4,750 रुपए की नकदी भी जब्त की गई। बरामद नशीले पदार्थों की कुल कीमत लगभग 68,850 रुपए आंकी गई है। महिला पुलिस सही हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है। 2026 में के पहले 6 महीनों में 3,431 शादियां दर्ज की गई। बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगे हैं। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें अब पुलिस से लेकर नई एजेंसी को दी जा सकती है, यानी कि एनसीए को दी जा सकती है। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थाओं की शुरुआत होगी। वहीं बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी और ऊर्जा बनाने में अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पार्क लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर 75,000 रुपए तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच कई ऐसे समूह हैं जो पारंपरिक जागरण नृत्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। गीत संगीत और कदमों के साथ

0: वे समुदाय की पुरानी मराठी समुदाय की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गणेश उत्सव के लिए तैयार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में दमकल कर्मी जरूरी आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त फंडिंग की कमी को लेकर हड़ताल पर है। हाल ही में पेरिस के दक्षिणी इलाकों और बोदो के पास लगी भीषण जंगल की आग के दौरान उनकी जिम्मेदारी और समर्पण की हद सामने आई। इन बेहद गंभीर घटनाओं ने मौजूदा व्यवस्था की कमियों को भी उजागर किया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। NHDC des Longchamp Cottage में उनहत्तर साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री नरेश्वर लाल रामफल जिन्हें कप्पू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी बहन लेखवंती रामफल के घर को तीज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। एसएसओ रोड जुब्रॉय में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सावन कुमार बिम्बाजी जिन्हें दिलबर के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके बेटे निवेद कुमार बिम्बाजी के घर जुब्रॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: हाँ जी, मुलाकात की सुहानी घड़ी आ गई। संडे स्पेशल लेजी आफ्टरनून शो सुहाना सफर प्रोग्राम। जय नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, आदाब आप सभी को। और दोपहर के इस खूबसूरत सुहाने और प्यार भरे वक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन आज को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में ज़रूर है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ शुरू हो रहा है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनहरा सुहाना, यादों से सजा हुआ सुहाना सफ़र। और मैं हूँ देविना, और अगले जो 3 घंटे हैं हम साथ रहेंगे। और अभी से लेकर 2 बजे तक कुछ खास गाने हम चलाने वाले हैं। किस पर पिक्चराइज गाने हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं आज, बस आप गेस कीजिएगा। और अगले 2 घंटे तक यानी कि 2 बजे तक कुछ पुराने सदाबहार गाने 70s 80s वाले, और हम साथ चलेंगे यादों की इन खूबसूरत गलियों में जहां हर गीत एक कहानी कहता है, हर धुन कोई एहसास जगाती है, और हर अंतरा दिल को थोड़ा और करीब ले आता है। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए मेरे दोस्त, और लंच टाइम है। बन अपेची शुभाहार आप सभी को। एंजॉय योर लंच एंड एंजॉय म्यूजिक, संगीत, गीत और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर, क्योंकि आज का संदेह है म्यूजिक, मेमोरीज और मस्ती के नाम। आशा जी, आदि बर्मन साहब, कोरस, जाने जहाँ, बस आप सुनिए और गेस कीजिए किस कलाकार पर हम आज कुछ गाने चलाने वाले हैं।

जय श्रोताओ, आप जानते हैं गणेश बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया हमारे दर आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं सभी लोग, भक्त लोग, आप लिसनर्स भी, सब सभी लोग को, सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये गाना हम खास तौर पर पेश कर रहे हैं मॉडल बया की अनीता जी, हेलो जी, करुणामृता इतू परिवार, गोगा परिवार, लालजी परिवार और आप सभी गणेश भक्तों को गणपति बप्पा मोरिया कहेंगे। तो सुहाना सफर प्रोग्राम में ये गाना आप सबों के लिए।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जा हो चुका है 12:32 और आज है संडे का दिन 13th of September 2026। रविवार का दिन है 13 सितंबर 2026। और आज की इस खूबसूरत दोपहर में आज तो बस इतनी ठंड नहीं है मेरे दोस्त, बस मौसम अच्छा है और बस कुछ ठंड कुछ गर्मी, और क्या करें मौसम ही ऐसा है। बस आप लोग हमारा साथ देते रहें, आप जहाँ भी हो, और इस म्यूजिकल सफ़र में आप सबों का फिर से वार्म वेलकम करते हैं। और हम बात कर रहे थे ना, हम अभी हमने चला दिया गणपति बप्पा मोरया का वो सभी भक्तों के लिए गाना, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतने भजन भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम है सुहाना सफ़र। एक दो गाने हमने चला दिया है गणपति बापा पर, और साथ में भक्ति प्रोग्राम भी चलते हैं रात को, तो बस उसको मिस मत कीजिए। अभी के लिए हम अपने इस सुहाने सफ़र प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं आज, बस फटाफट हमें मैसेजेस भेजिएगा। फ़ोन अभी ठीक नहीं है, बस कुछ देर में फ़ोन ठीक हो जाएगा और आप फ़ोन कर पाएंगे 4028070 पर, और साथ में मैसेजेस के लिए 5250-6200। तो हमने चला दिया यस जाने जा मेरी जाने जा। और अगर हम बात करें कि हम कह रहे थे ना कि किस एक्ट्रेस पर या किस एक्टर पर हम गाने चलाने वाले हैं, तो बस कुछ लोगों ने हमें मैसेज कर लिया है।

करुणा लोबगन शुमे गईया की हैं, हमेशा साथ देती हैं, प्यारी प्यारी सी करुणा जी आपको थैंक यू सो मच कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो हम बात करेंगे उस खूबसूरत अदाकारा की जिनकी आंखों में शरारत थी, चेहरे पर मासूमियत थी और अभिनय में एक अलग ही चमक, रीना रोया। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 70s और 80s के हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरत मौजूदगी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। तो चलिए आज की इस दो घंटों में इस म्यूजिकल जर्नी में चलते हैं रीना रॉय के फिल्मों, किरदारों, गीतों और यादगार पलों की दुनिया में, साथ चलेंगे ना। और दो बजे के बाद बेशक 90s वाले गाने चलाएंगे और कहानी भी होगी, गीत भी होंगे और यादें भी होंगी। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज का सुहाना सफ़र है रीना रॉय के नाम।

जहाँ प्यार की खुशबू भी करने आए हैं आप सबों के साथ। और इस लवली से संडे में बहुत से लोग जो हैं वो बिजी होंगे घर के कामकाज में, कुछ लोग पूजा की तैयारियों में, कुछ लोग लाफुआ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग सेंटर में, और कुछ लोग बस आराम लंच के बाद रिलैक्स और हमारा साथ देते रहे ऐसे ही और इन फ्री रेडियो मनोरंजन पर। बिल्कुल, तो आज है स्पेशल रीना रॉय। कितनी खूबसूरत थी क्या बताएं, और उनकी यादें जो हैं आज हम ताज़ा कर रहे हैं, और इनकी खूबसूरत जो चेहरा था, उनका खूबसूरत चेहरा, उनकी स्माइल, और साथ में जैसे वो डायलॉग डिलीवर करती थी ना, वाह, उनकी आवाज़ में क्या कशिश थी। आप लोग जिन्होंने इस एक्ट्रेस की फिल्में देखी हैं तो बस आपको पता चल ही गया होगा कि वो कमाल की एक्ट्रेस थी। तो जब गीतों में मेलोडी थी, बोलों में मिठास थी, और फिल्मों में किरदारों के साथ साथ कहानियां भी दिल में उतरती थी, रीना रॉय की खासियत यही थी कि चाहे रोमांटिक रोल हो, इमोशनल करैक्टर हो, या फिर स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार, या फिर डांस करने का जब समय आता था, उन्होंने हर भूमिका को अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी अदाकारी में ग्लैमर के साथ साथ भावनाओं की गहराई भी दिखाई देती थी। तो चलिए उनके बारे में और एक दो बातें करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून, आपको भी अनीता जी और फिर कॉन्फ्लैक हमेशा साथ रहती हैं, थैंक यू। सो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग, थैंक यू हमेशा की तरह। और फिर धनवान वाला गाना, ये आँखें देख कर हम सारे दुनिया, हाँ जी ये ऑफकोर्स बजा देंगे आपके लिए। और अनीता जी सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ भेज रही हैं, थैंक यू सो मच, सभी फ्रेंड्स और फैमिली को भी और सभी लिसनर्स के लिए भी। तो अनीता जी ये गाना आपके लिए, और फिल्म है धनवान, लता जी, और साथ में होंगे किशोर सुरेश वाडकर साहब।

जी हाँ दोस्तों, वैसे कहते हैं कुछ गीतों में रोमांस सिर्फ शब्दों में नहीं होता, एक नज़र में होता है, एक मुस्कान में होता है, एक खामोशी में होता है। और रीना रॉय के कई गीतों में यही एक खूबसूरत एहसास देखने को मिलता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक सॉफ्टनेस थी, लेकिन साथ ही एक कॉन्फिडेंस थी। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें अपने दौर की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल किया। ऋषि कपूर साहब हो या फिर जितेंद्र साहब, उनके साथ अदाकारा जो है रीना रॉय ने बखूबी उनके साथ काम किया और लोगों ने बहुत पसंद किया इन जोड़ियों को। और कई गाने की मांग आ रही हैं, आप लोगों को रीना रॉय वाला सिलेक्शन अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो अब ये जो गाना है ना, अगर रीना रॉय की बात होती है और ये गाना ना हो तो ये हो नहीं सकता। हम किस गाने की बात कर रहे हैं, गेस कीजिए। शीशा हो या दिल हो, हाँ जी, आशा मूवी का गाना, जिसमें लोगों ने रीना रॉय को खूब पसंद किया। और ये जो गाना है ना, ये हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी को, आप सभी लिसनर्स जो इस गाने को पसंद करते हैं। साथ में शुमे गई की करुणा लोबोगन है, साथ में विमला सिबोरन और सभी परिवार के लिए, और जितने लोग लता जी के फ़ान हैं, रीना रॉय के फ़ान हैं, ये गाना आपके लिए।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं पूजा जी से संक्षिप्त समाचार। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग आईयूसी और सीगार्ड के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। इस समझौते पर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से इलाके में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। आज सुबह सोगेज में लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक कि एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। एक मतलब खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामी घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जानें गई हैं। देश की सड़कों पर अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। भगवान श्री गणेश के स्वागत के लिए घरों, मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में उत्साह का माहौल है। कहीं गणेश जी की सुंदर और आकर्षक झांकी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो कहीं पूजा स्थल को फूलों, रंगोली और रोशनी से सजाया जा रहा है। भगवान गणपति स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री जुटाने में व्यस्त है और भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। कल भक्त भगवान गणेश से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

नंबर जी 14 NHDC देलोंगशांग कुतेज में 69 साल के 69 years old श्री नरेश्वर लाल रामफल जिन्हें लोग कापू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है क्यों थी आज इस अपहर के 3 बजे

0: जात सपहर के 3 बजे इनकी बहन लेख हवंती रामफल के मकान नंबर G14 NHDC दिलोंग शां कुते जैसे उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाए जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 73 अवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन में 84 साल के 84 years old श्री अद्वैत रंगतुआ श्री अद्वैत रंगतुआ जिन्हें लोग अद्वैत नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ कल दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 73 अवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन से उठाकर 3 माइल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 2 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: RM3 Radio.

जसन अंतरी कसम मूवी का प्यार भरा गाना आप सुन रहे थे आशा जी की आवाज में। हम आपको याद होगा इसमें दिखे थे कमल हसन साहब, साथ में थी रीना रॉय। जहाँ और एम फ्री मनोरंजन पर आप सबों का फिर हम स्वागत करते हैं। हो चुका है अभी 1:10, आज है संडे का दिन 13th of September और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरे घंटे में आप सबों का वेलकम है और रीना रॉय का सफ़र अभी जारी है मेरे दोस्त। तो चलिए खोलते हैं नॉस्टैल्जिया की एक और खिड़की और सोचिए सिनेमा हॉल की वो बड़ी स्क्रीन, सामने चमकते सितारे और बैकग्राउंड में बजता हुआ कोई खूबसूरत गीत, क्या दौर था। आज उसी दौर की यादों को फिर से जीते हैं रीना रॉय और उनकी मेमोरेबल सिनेमा, उनमें से एक्टिंग और गाने। रीना रॉय ने अपने करियर में सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक खुद को सीमित नहीं रखा, उनकी फिल्मों में ऐसे किरदार भी आए जिनमें इमोशंस, संघर्ष और पर्सनालिटी की मजबूती दिखाई दी। यही वजह है कि उनके अभिनय को सिर्फ उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके टैलेंट के साथ न्याय नहीं होगा। वैसे कहते हैं रीना रॉय वॉज मच मोर दैन ए ब्यूटिफुल फेस ऑन द स्क्रीन। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके एक्सप्रेशंस और इमोशनल परफॉर्मेंसेस ने कई सीन्स को यादगार बनाया। और ये जो गाना है जितेंद्र साहब के साथ रीना रॉय दिखी थी बारिश में भीगती हुई, नाचती हुई, गाती हुई, और आवाज़ें होंगी लता जी और किशोरदा। फिल्म है जैसे को तैसा और ये गाना जो है खास तौर पर शुमे गए की किरण बिदेसी के लिए, उनके प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं, बारिश नहीं हो रही है आज मगर ये गाना हमेशा मस्त मस्त रहता है, सुनते हैं।

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
1: बात नहीं कर रही मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
2: नहीं
1: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
2: एक तो परदेश जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
1: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
2: छोड़ो।
1: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।

0: ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना। इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
1: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहाँ की कोई लड़की फिदा हो गई तो
0: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
1: जलन नहीं होगी?
0: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी।
1: शोभा,

जहां अर्पण मूवी का गाना था परदेश जाके परदेसियां भूल न जाना पिया। आप जहां पर भी हो भूलना मत, हम हैं लाइव एंड डायरेक्ट यहां पर आपके लिए और एमफ्री रेडियो मनोरंजन पर। अभी से लेकर हमने प्रोग्राम की शुरुआत तो कर दी है 12 बजे से, और ये जो है दूसरा घंटा है रीना रॉय पर पिक्चर आज कुछ गाने, और एक दो है जो हट के गाने हैं हम बजाएंगे आप सबों के लिए। और दो बजे के बाद, दो बजे से तीन बजे तक 90s वाले स्वीट स्वीट गाने तराने आपके लिए। और ये जो गाना था ना अर्पण मूवी का, ये जाएगा रिव्या जोरोपो की माला जी और सभी को कह रही है हैप्पी संडे, और पूजा पाठ में लगी हुई है फिर भी हमें सुन रही है माला जी, थैंक यू सो मच। और ये गाना खास तौर पर किरण कनील कबीर केविन कनिष सत्यम शिव और आपके लिए माला जी। अब रीना रॉय को छोड़ते हैं कुछ, उसको ब्रेक देते हैं और सुनते हैं अगला गाना। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में साथ हैं मुकेश साहब, फिल्म है मेरी सूरत तेरी आँखें, और ये गाना जो है गायत्री जी की मांग

पर हैं सैपिया की है और गायत्री जी अभी गए हैं गई हैं अपने बेटे सुधीर के यहाँ तैयारियां में लगी हुई है गणेश चतुर्थी वाला वो काम काज है करने को घर पर और गायत्री जी हेल्प कर रही हैं आप सभी को बॉन कुराज कहेंगे और साथ में उनकी जो प्यारी सी बहू है सुधा साथ में गाने सुनते सुनते काम कर रही हैं थैंक यू सो मच सो सभी को कह रही हैं शुभकामनाएं हैं गणेश चतुर्थी के लिए थैंक यू सो मच और ये गाना खास तौर पर ऑफ कोर्स सुधीर के लिए सुधा है गायत्री जी आपके लिए लक्ष जश और प्यारे से जो मिथिलेश हैं और उनकी जो सभी जो परिवार है स्पेशली उनकी जो बहन है अमृता मीरा गिरिशा मेधा तो आप सबों के लिए ये गाना करते हैं और आप जुड़े हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान

बेल्जियम के से है प्रकाशवती जी. आई एम श्योर ये गाना आपको अच्छा लगेगा. सो ये गाना आपके लिए. और आप कह रही हैं बेल्जियम में मौसम ठंडा ठंडा सा है, जुकाम भी होगा यहाँ. उफ, टेक केयर प्लीज़. एंड सभी को आप कह रही हैं गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा जी साथ ही हैं. सो बस सबको शुभकामनाएं हैं गणपति के लिए और ईश्वर की कृपा हो सभी पर.

0: जहनागिन मूवी जो आई थी 1976 में और डायरेक्टेड बाय राजकुमार कोहली और रीना रॉय इसमें थी टाइटल रोल में और इसके साथ थे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, विनोद मेहरा, योगिता बाली, कबीर बेदी और साथ में अनिल धवान। और फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और ये एक फंटाजी टाइप फिल्म उस वजह से ब्लॉकबस्टर मूवी थी एट द बॉक्स ऑफिस एंड द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1976। और फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म रीना रॉय अटेंड स्टार स्टेटस, उनको स्टार का खिताब मिला और ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया रीना रॉय ने और लोगों को बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम में।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

जी हाँ, बेस्ट विशेज हैं मेबैग की लवली सी लेडी हैं नालिनी जी, और बेस्ट विशेज भेज रही हैं उनके स्पेशल स्पेशली हबी देव, और साथ में है बेटा युवानेश और जेशन, और पूरा जो बाबुआ फैमिली है उनके हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, और हमारी पूरी टीम की ओर से नालिनी जी आपको हैप्पी बर्थडे। और जितने लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, लिसनर्स हैं, आप अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो हमारी ओर से ढेर सारा प्यार है, और एंजॉय योर डे, स्पेशल डे, और गणपति पापा जो हैं आपका जो ये बर्थडे है ना खुशगवार बनाएं, और आपको खुश रखें, हमेशा सेहतमंद रखें, और आप जो भी चाहें ज़िंदगी में आपको हमेशा मिले। तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे। और जीवन है तो आशा है, और ये जो गाना है आप समस्त जो लिसनर्स हैं आप सबों के लिए है।

जब बचपन के दिन भुलाना देना ये गाना था स्पेशली श्यामा रघुनंदन जी के लिए और बैठे बैठे इस संडे को बचपन की यादें आ जाती हैं जवानी की यादें आ जाती हैं बेशक हम ये गाना आपके नाम करते हैं और ये आपके प्यारे प्यारे जो परिवार हैं रघुनंदन परिवार और साथ में आपकी जो सहेलियाँ हैं वीना रामफोल नंदिनी ओकलू विश्वानी दुखी साथ में आपकी जो भाई साहब हैं जयप्रकाश आपकी भाभी हैं नम्रता युधीश और केशव और जितने आपके वेल विशेज हैं आपके लिए था ये गाना एक और गाना जोड़ते हैं यहाँ पर लता जी की आवाज़ में शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज़ में तो फिल्म है दो जासूस और ये गाना और पहली बार आज धनी जी ने हमें फ़ोन किया यहाँ पर धनी जी और वे कह रहे हैं वे आराम करने जा रहे हैं क्योंकि रात को पूजा है तो अभी के लिए ये गाना यश और हिमिश के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए

जमाधुरी जी अब आपका मैसेज पढ़ रहे हैं तो बस हाँ जी आज ना रॉय पर पिक्चराइज गाने चला रहे थे अभी के लिए ये गाना फिल्म बाजी से दिया गया मेरे जीवन साथी मोका सिसुदेवी जी ये गाना आपके लिए भी

0: RM3 Radio. Radio.
1: दो बजने वाले हैं और इसके बाद 90s वाले गाने 2 बजे से 3 बजे तक. और साथियों ये गाना खुशी तेरी है मेरी खुशी नाज़िया हसन की आवाज़ में और नाज़िया जी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं मनोज सोहन जी. साथ में हैं उनकी जो प्यारी सी वाइफ है नजीमा और सभी को कह रहे हैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भेज रहे हैं. और गया सिंह आश्रम के जितने रेजिडेंट्स हैं बीमार लोग हैं जितने लोग अकेले हैं सबके साथ मनोज जी उनको याद करते हैं ये गाना आप सबों के लिए. और 2 बजे के बाद हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी.

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से पूजा आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी को मेरा नमस्कार सोगेज में आज सुबह लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामूहिक घटनास्थल पर पहुंच गए लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जाने गई है। देश की सड़कों पर अब तक कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग आईओसी और सिगाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। इस समझौते पर ईबन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में जलवायु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में। भगवान श्री गणेश के स्वागत के लिए घरों मंदिरों और सार्वजनिक पंडालों में उत्साह का माहौल है। गणेश स्थापना के अवसर पर विधि विधान से पूजा आरती और मंत्र उच्चारण के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। भगवान गणेश को प्रिय मोदक और लड्डू की तैयारियां भी जोरों पर है। कल जब शुभ मुहूर्त में गणेश मतलब गणपति बापा की स्थापना होगी तो पूरा वातावरण गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के जय जयकार से गूंज उठेगा। विदेश में इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार जावा सागर में एक दुर्घटनाग्रस्त इंडोनेशियाई यात्री नौका से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 107 लोगों को बचा लिया गया है। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी ने बताया कि वियागो ट्रांसपोर्ट 8 नामक जहाज से संपर्क टूटने के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: नंबर G14 NHDC de Longchamp कोटेज में 69 साल के 69 years old श्री नरेश्वर लाल रामफल, जिन्हें लोग कापू नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनकी बहन लेख हवंती रामफल के मकान नंबर G14 NHDC de Longchamp कोटेज से उठाकर पीतो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

जाओ वेलकम टू दिस थर्ड आवर. हो चुका है 2:12, संडे का दिन है 13th of September. और अभी से लेकर 3 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे गाने, 90s वाले, उस 90s से ऊपर वाले गाने, रोमांस, एक्शन वाली जो फिल्में थी ना, इन सब के गाने आप सबों के लिए. मगर आज खास कुछ लोगों ने कहा, हम पूछा हमसे, क्यों रवीना टंडन पर कुछ गाने चलाए, रवीना जी, द डैशिंग वन, द ग्लैमरस रवीना जी. कोई बात नहीं, इस पर उन पर पिक्चर आज कुछ गाने चलाएंगे ही. और साथ में हम हमारे पास आ पहुँचे हैं कई एक दो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स ऑफ द 90s, कुछ स्वीट स्वीट तराने आप सबों के नाम करने वाले हैं. बेशक आप सुन रहे हैं MBC RM Free Radio मनोरंजन, और वक्त है एक और खूबसूरत म्यूजिकल सफ़र का, सुहाना सफ़र प्रोग्राम. और आप लोग भाग रहे हैं आज, हालांकि कुछ लोग बिजी हैं, कुछ लोग बस आराम कर रहे हैं, फिर भी हमें सुन रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच. तो रवीना के रंगीन फिल्मी सफ़र पर एक दो गाने आज. सो बस ये गाना हम कैसे भूले, फिल्म है दिलवाले, कुमार सानू साहब, साथ में अलका जी. ये गाना सातों जन्म में तेरे, इसमें नजर आए थे रवीना टंडन साथ में अजय देवगन. और जानते हैं समय की कमी के कारण कुछ लोगों के गाने हम नहीं चला पाए, मगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपका नाम लेंगे ऑफ कोर्स. सो नंदिनी जी, ये आपके लिए.

सपनों की रानी, सपनों की महारानी, जी हाँ रविना टंडन। और उस पर बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्ट्रेस की जिनकी मुस्कुराहट भी आइकॉनिक, डांस मूव्स भी अनफॉरगेटेबल और स्क्रीन प्रेजेंस भी कमाल की। रविना टंडन नाम ही काफी है एक पूरे बॉलीवुड एरा की यादों को जगाने के लिए, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए एक बार फिर से और निकल पड़ते हैं रविना टंडन की स्टोरी को लेकर, उनकी फिल्मी करियर को लेकर। वैसे फिल्मी करियर की शुरुआत 90s में हुई और उनकी जो पहली फिल्म थी सलमान खान के साथ पत्थर।

की फूल, और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एंट्री मारी और उनका जो बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई। उनकी पर्सनालिटी में था एक यूनिक कम्बिनेशन, ब्यूटी भी, कॉन्फिडेंस भी, एलिगेंस भी और ज़बरदस्त स्क्रीन एनर्जी भी। 90s का बॉलीवुड याद कीजिए, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कच्ची म्यूजिक, लार्जर दैन लाइफ रोमांस और स्क्रीन पर रवीना की डार्जिलिंग प्रेजेंस। उनके फिल्म्स और सॉन्ग्स ने एक पूरी जनरेशन को एंटरटेन किया। और सबसे खास बात, रवीना सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रही, उन्होंने इमोशनल, सीरियस और चैलेंजिंग रोल्स भी निभाए और अपनी एक्टिंग वर्सेटिलिटी दिखाई। एक एक्ट्रेस जो वक्त के साथ बदली लेकिन ऑडियंस के दिल में भी अपनी जगह कभी नहीं बदली। सो बस रवीना टंडन पर पिक्चराइज कुछ लोकप्रिय गाने आप सबों के लिए। यह है RM Free रेडियो मनोरंजन, देवीना है आपके संग।

जी हाँ, सुहाना सफर प्रोग्राम में आज एक दो गाने रवीना टंडन पर पिक्चराइज्ड। और अगर हम रवीना के डांस नंबर्स की बात करें तो 90s के डांस सॉन्ग्स की बात हो और रवीना का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। उनका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशंस और ग्रेसफुल मूव्स स्क्रीन पर आते ही पूरा एटमोसफियर इनर्जेटिक हो जाता था। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त हो या अखियों से गोली मारे, रवीना ने सॉन्ग्स को अपनी स्टाइल से यादगार बना दिया। कौन भूल सकता है शहर की लड़की, हाँ जी, और उनकी वो ट्रेडमार्क स्माइल, बस ऑडियंस का दिल जीतने के लिए वही काफ़ी थी। तो मॉरिशस वालों, और अगर आप मॉरिशस से बाहर हमें सुन रहे हैं तो आप सबों को एक बड़ा हाय एंड हेलो। और साथ में रवीना पर पिक्चर आइज, ये अगला गाना राजा जी मूवी का गाना है और ये गाना एक्चुअली हमारे प्लेलिस्ट में था ही और उस पर ये गाने, इस गाने की जो है फरमाइश आई है। तो नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून, एक मैसेज आया है जी, तो शो योर शो ऑन ओल्डी सॉन्ग्स एंड अनरना रॉय वेरी सेलेक्टिव, थैंक यू और फंटास्टिक, नाइस टू लिसन, विल यू प्लीज़ प्ले 90s सॉन्ग फॉर अस। हाँ जी, ज्ञान बिहारी जी हैं, हाँ जी, वाइफ सबिता के साथ हैं, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव, सुनील, रानी, शीतल और सभी और एम फ्री लिसनर्स के लिए तेरे प्यार ने। अगर आपको ये गाना पसंद है तो आपके लिए

जहाँ प्यार करो प्यार करो प्यार करो वैसे मुमकिन नहीं है सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक प्यार करना, मगर एटलीस्ट मन में दिल में उसका नाम ले ही सकते हैं, उनका चेहरा है आंखों के सामने है, बस उनसे प्यारी प्यारी बातें करो, ये भी तो प्यार है। उनके लिए उनको मैसेज भेजो,

या फिर उनके लिए जब नौकरी से वापस आए चॉकलेट कराओ या फिर घर में एक साथ कुछ ना कुछ पकाना है तो एक साथ करो, ये भी तो प्यार है मेरे दोस्त। बस ऐसे ही बैठे बैठे आंखों में आंखों डाल कर ये प्यार नहीं होता। बस प्यार में हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ये है सच्चा प्यार। और सबसे ऊपर आपका प्यार जो आप हम पर बरस से बरसाते हैं हर पल हमेशा और एवरी रेडियो मनोरंजन और साथ में सुहाना सफर प्रोग्राम में आप लोग हमेशा हिस्सा लेते हैं, थैंक यू सो मच। आपको तेज की ओर बढ़ते हैं आशा जानू जी और सभी भक्तों को, शिव भक्तों को नहीं गणेश भक्तों को भी, वे सभी जो डिवोटीज हैं सभी को कह रही हैं पायस गणेश चतुर्थी और साथ में हैप्पी संडे टू यू टू आशा जी। और ये जो अगला गाना है ये रविना टंडन पर नहीं बल्कि ये जो गाना है जूही चावला और ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज है, फिल्म है दरार। और ऋषभ के लिए है शुभम, उनकी जो मामा है कुमारी, आरती उनकी बहन है और साथ में उनके जीजू हैं राज, उनके नाम ये अगला प्यारा सा बेहद ही रोमांटिक गाना ऐसी मिली निगाहें। जी हाँ, दो बजकर 41 मिनट हुए हैं, देखते देखते हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक खत्म हो जाएगा। आप सुन रहे हैं हमें, तो बस एंजॉय।

जहाँ मस्त मस्त गर्ल के बारे में आज हमने बात की और उनके कुछ गाने चलाए, और अब थोड़े समय में आपसे विदा लेने का समय आ जाएगा। बस दोस्तों, तो मन को शांत रखना है, बस हमेशा आप खुश रहिए,

जी हाँ, कितनी जल्दी गुजर गया ये एक घंटा रविन्द्र टंडन पर पिक्चराइज गाने सुन सुनकर, जैसे 90s की कोई खूबसूरत फिल्म हो जिसका इंटरवल भी याद है और एंडिंग भी। आज हमने याद किया रवीना को, ग्लैमर, उनका डांस, उनकी एक्टिंग, उनकी स्माइल और सबसे बढ़कर वो बॉलीवुड मेमोरीज जो उन्होंने हम सबको दी हैं। सो बहुत जल्द हम आपसे विदा लेंगे और 3 बजे आप सुन पाएंगे अजय प्रताप सिंह से, उनका अपना प्रोग्राम ऐसा भी होता है, उनमें उनका साथ दीजिएगा। आप जो लोग जो भक्त पूजा करने जाएंगे, आप सभी को हम कहेंगे आपकी जो पूजा है सफल हो, हम सब के लिए पूजा कीजिएगा और हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो बस सुहाना सफ़र में हम फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह और याद रखिए, गाने पुराने हो सकते हैं, फिल्में पुरानी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी यादें कभी पुरानी नहीं होती। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुहाना सफ़र से इजाज़त दीजिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रेडियो के साथ जुड़े रहिए। बस जाते जाते एक दो जो लोग हैं, एक दो जो दोस्त हैं, उनका नाम लेते जाएंगे क्योंकि समय नहीं मिलेगा। ये आपने जो गाना रिक्वेस्ट किया है, सो अमेजिंग A1 सिलेक्शन, थैंक यू दारन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लविशा एंड अपाडू फैमिलिया वैष्णो, और आंदोलन वाला गाना हम नहीं चला पाएंगे, मगर जाते जाते ये इम्तिहान वाला गाना आपके नाम चल करते जाएंगे। और जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, आप सबों के लिए ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ। आपको नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। कल सोमवार शुभ मुहूर्त में गणपति बापा की स्थापना होगी, जो पूरा वातावरण गणपति बापा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या के जय जयकार से गूंज उठेगा। गणेश स्थापना के अवसर पर विधि विधान से पूजा आरती और मंत्र उच्चारण के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया जाएगा। हिंद महासागर इलाके में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग IOC और सिहाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। इस समझौते पर रिबन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सोहेज में आज सुबह करीब 40 वर्ष की उम्र में की एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक के पिछले पहिए से टकरा गया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका। विदेश में इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव एजेंसी के अनुसार जावा सागर में एक दुर्घटनाग्रस्त इंडोनेशियाई यात्री नौका में नौका से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 107 लोगों को बचा लिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
1: La Chapelle Ardente et Lienson, Royal Road, Bubassemé, à 78 साल के 78 years old, Shri Prakash Debi, जिन्हें लोग प्रकाश नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे रोजहिल स्थित मगाजे देबी के मालिक थे। इनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे La Chapelle Ardente et Lienson, Royal Road, Bubassemé से उठाकर शिबेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाश देवी नंबर 9 शॉल ली स्ट्रीट रोजहिल के रहने वाले थे। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 84 साल के 84 years old श्री अद्वैत रंगतुआ, जिन्हें लोग अद्वैत नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन से उठाकर 3 मामेल कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट
5: Continuous music. RM3.
6: ऐसा भी होता है on RM3.
7: कैसी है ये दुनिया और कैसे हैं यहाँ के लोग? कैसी है ये दुनिया और कैसे हैं यहाँ के लोग? सब मतलब ही है यहाँ पर, सब अपने मतलब के लिए ही जीते हैं। मुंह के सामने तो मुस्कुराते हैं, पर पीठ के पीछे कुछ और ही नज़ारा है। आखिर इंसान इतना क्यों बदल गया? पहले इंसान कितना भोला भाला था, सब कुछ समझता था, एक दूसरे की सहायता करता था। आज वह इंसान गुस्सा करता है बात बात पर, किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, वो जीता है केवल अपने लिए। इंसान सुबह घर से निकलता है, पर क्या शाम को वो घर लौटेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।

आखिर इतना बदलाव क्यों क्यों इंसान इंसान ना रहा इंसान शैतान बन चुका है आखिर इतनी जलन इतनी ईर्ष्या की भावना क्यों इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इन योर फेवरेट शो ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है अजय प्रताप सिंह के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार Yes, you're the most welcome. शाम के 3:05 हो रहे हैं. You're tuning to the best radio station in Mauritius, RM Free, MBC, RM Free Radio Manoranjan. और अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है.

0: दोस्तों आजकल दुनिया में हो क्या रहा है नेपाल में फ्लैश फ्लड लैंडस्लाइड अवालांश चाइना में तूफान का प्रहार और फ्लड्स इंडोनेशिया में ज्वालामुखी और जब वहां ज्वालामुखी फटी तो कई इलाकों में 11 ज्वालामुखियां फटी एक साथ पैसिफिक ओशन में एक साथ 3 तूफान पैदा हुए हैं आखिर ये सब प्राकृतिक आपदाएं हमें क्या कहना चाहती है क्या दुनिया का अंत होने वाला है क्या चिन्ह है ये सब क्यों आजकल अचानक इतनी प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आ रही है क्या कलयुग का अंत अब हो ही जाएगा क्या विष्णु का अवतार कल्किन आ गया है दुनिया में बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश तो कर रहे पर जवाब तो नहीं मिल रहा है और बाबा वेंगा जो है उनकी भविष्यवाणी है कि साल 2026 में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कभी घटी नहीं है खासकर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी जिससे बहुत ही माली नुकसान होगा लोगों की जान भी जा सकती है और बाबा वेंगा जो है उनकी भविष्यवाणी आज तक सच ही हुई है सो हम क्या कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई अनहोनी ना हो और एक तरफ तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं दूसरी तरफ एलनीनो का प्रहार एलनीनो केवल पैसिफिक ओशन में नहीं चारों ओर फैला हुआ है और उसका प्रभाव मॉरिशस पर भी पड़ेगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समर सीजन में बहुत गर्मी होगी जिससे हमारे जो कोरल रीफ्स हैं उन्हें क्षति पहुंच सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पर दुनिया में आखिर आजकल क्या हो रहा है अचानक इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं एक साथ सो सोचने वाली बात है है कि नहीं दुनिया में ऐसा भी होता है दुनिया में ऐसा हो रहा है
1: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था
2: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था I said what gorgeous sexy men साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े-बड़े
3: कयामत कयामत कयामत

कुछ लोग सोच रहे हैं कि कयामत का दिन शायद आ ही गया, इसी से प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। अब ये बताना मुश्किल है क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी दुनिया का अंत होने में बहुत समय लगेगा। और हाल ही में और एक अचरज वाली चीज पेश आई, अर्जेंटीना का समुंदर का पानी सूख गया। भाई, ये अटलांटिक सागर में पाया जाता है, आखिर क्या वो कारण है कि अर्जेंटीना में अचानक पानी, समुंदर का पानी सूख गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रलय का संकेत है। ये समुंदर अचानक कहाँ गायब हो गया, ये चर्चा की बात बनी हुई है। वैज्ञानिक इसे कोस्टल फिनोमेना कहते हैं। सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना के सूखे सागर का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। मुझे याद है पिछली बार जब इंडोनेशिया में सुनामी आने वाला था तो कुछ समय के लिए समुंदर का पानी बहुत सूख गया था और अचानक सुनामी आया और कितने लोगों की जान चली गई थी। अब पता नहीं अर्जेंटीना का पानी क्यों सूखा है, बट साइंटिस्ट से दैट इट इज़ ए नेचुरल कोस्टल फिनोमेना। अब बात कहाँ तक सच है ये तो वही लोग जान सकते हैं, पर अचरज वाली बात है कि जिस समुंदर में लोग तैरते हैं, मछली मारते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कि वो समुंदर अचानक सूख जाए। समुंदर में लोग चल रहे हैं, कैन यू इमेजिन? जी हाँ दोस्तों, ये सब प्राकृतिक प्रकोप जो है आजकल बहुत कॉमन हो रही है और डराने वाली भी बात है। लोग डरे हुए हैं, फिर भी लोग क्यूरियस है, लोग जानना चाहते कि आखिर ये समुंदर का पानी गया तो गया कहाँ।

ऐसा भी होता है यस ऐसा भी होता है और एमफ्री रेडियो मनोरंजन की लहरों पे शाम के 3:30 बज रहे हैं और आप यह प्रोग्राम से लाइव रेडियो मनोरंजन पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आमीन दादा कौन था? आमीन दादा एक डिक्टेटर था, जी हाँ, और वो युगांडा के मिलिट्री रूलर थे। उन्होंने 1971 से 1979 तक देश पर शासन किया। आमीन दादा का जन्म लगभग 1925 के आसपास युगांडा में हुआ था। वो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी के किंग अफ्रीकन राइफल्स माने जाते हैं और 1971 में जब प्रेसिडेंट मिल्टन छोटे देश उबुटो देश से बाहर हुए तो आमीन दादा ने मिलिट्री कप के जरिए सत्ता संभाली। शुरुआत में उन्हें कुछ लोगों ने उबुटो के ऑथोरिटेरियन पॉलिसीज के अल्टरनेटिव के रूप में देखा, लेकिन उनका रिजीम बहुत जल्दी ब्रूटल डिक्टेटरशिप में बदल गया। यस, ही बिकेम द बिगेस्ट डिक्टेटर। और आमीन दादा के रूल के दौरान पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सस्पेक्टेड एनिमीज को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के मुताबिक लाखों लोगों की जान गई, एग्जैक्ट नंबर अनसर्टेन है। 1972 में उगांडा के एशियन इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन को देश से निकलने का ऑर्डर दिया गया। इससे उगांडा की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनका रजीम एथनिक पर्सिक्यूशन और पॉलिटिकल रिप्रेशन के लिए नोटोरियस है। 1972 में आमीन ने उगांडा में रहने वाले एशियन ओरिजिन लोगों, जिनमें बहुत से इंडियंस और गुजराती भी थे, कंट्री को छोड़ने का ऑर्डर दिया। उन्होंने उन पर उगांडा के इकॉनमी को कंट्रोल करने और लोकल अफ्रीकन्स के इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज रोकने जैसे आरोप लगाए और बहुत से एक्सपेलेशंस ब्रिटेन, कनाडा, इंडियन, दूसरे देशों में चले गए। 1978 में उगांडा और तंजानिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तंजानियन फोर्सेस और युगांडन एक्साइल्स ने युगांडा में एडवांस किया। अप्रैल 1979 में कंपाला पर कंट्रोल खो देने के बाद इदी अमीन युगांडा से भाग गए। बाद में वो लीबिया और सऊदी अरेबिया में रहे। 2003 में जेदा सऊदी अरेबिया में उनकी मौत हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आमीन दादा को दुनिया के 20th सेंचुरी के सबसे नोटोरियस डिक्टेटर माने जाते हैं। उनके रूल में कहानी युगांडा के मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत डार्क चैप्टर है। सो आमीन दादा जो है बहुत बड़े डिक्टेटर थे और लोगों को मारना, जान से मारना उनके बाएं हाथ का खेल था। सो ऐसे भी लोग इस

इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत धरती पर है। जी हाँ, और ये जो टापुए हैं जो बहुत बहुत मन भावन है, उनमें से है मालदीव आइलैंड्स, फिर बोरा बोरा जो फ्रेंच पोलिनेशिया में पाया जाता है, सेशेल, मॉरिशस, पलावान फिलीपींस, संतोरिनी ग्रीस, बाली इंडोनेशिया, फिजी, हवाई, गैलापागोस आइलैंड्स, और बेशक ये जो टापुए हैं बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका मन करेगा कि बस आप वहीं पर रहें। और जैसे कि हमने बताया, बहुत सी जगह मालदीव्स का जो सफ़ेद रेत है, चौकवास पानी, कोरल रीफ और ओवरवाटर विलास के लिए मशहूर है। हनीमून और लग्जरी हॉलीडेज के लिए बहुत से पॉपुलर भी है। बहुत से बॉलीवुड के स्टार वहाँ पर जाते हैं। रिसेंटली बिपाशा बासु अपने हनीमून के यहाँ वहाँ गई थी। फिर अमिताभ बच्चन का एक विला है वहाँ पर, और बोरा बोरा जो फ्रेंच पोलिनेशिया में पाया जाता है, वाह वाह वाह, बोरा बोरा, उसके लागून के बीच का वोल्केनिक माउंटेन, आ हा हा हा, वो क्रिस्टल क्लियर वाटर, लग्जरी रिजॉर्ट्स, उसका माउंट ओटामानु, सो ब्यूटीफुल। फिर सेशेल है, वहाँ का ग्रेनाइट रॉक्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट और प्रिस्टीन बीचेस का कॉम्बिनेशन। फिर मॉरिशस तो आप जानते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा टापू है मॉरिशस पर, हिंद महासागर का तारा है, सितारा है, लोग इसे स्वर्ग मानते हैं। मॉक ट्वेन ने कहा है, अगर इस दुनिया में पैराडाइज है तो दैट इज़ इन मॉरिशस। यहाँ के जो बीचेस है, सात माउंटेन्स है, वाटरफॉल्स, कोरल रीफ, बहुत बहुत खूबसूरत है। फिर फिलीपींस में एक जगह है जिसका नाम है पलावन, लाइमस्टोन क्लिफ्स, हिडन लगून्स, एमराल्ड ग्रीन वाटर, माई गुडनेस, ओहो। फिर ग्रीस में एक जगह है संतोरिनी, वाइट एंड ब्लू बिल्डिंग्स, वोल्केनिक क्लिफ्स, एजेंसी का स्पेक्टेकुलर सनसेट, जी हाँ, जब सूर्यास्त होता है, सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। फिर इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, बीचेस के अलावा राइस टेरेसेस, टेम्पल्स, वाटरफॉल्स और वोल्केनिक लैंडस्केप भी है। फिर फिजी में है ट्रॉपिकल बीचेस, कोरल रीफ और लुश आइलैंड्स, ड्राइविंग और स्नोकेलिंग के लिए एक्सेलेंट। फिर हवाई, यूएसए में हवाई एक जगह है जहाँ पर वोल्केनोज हैं, बीचेस, वाटरफॉल और ड्रामेटिक माउंटेन्स। गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर में है, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ जेंट टोटोइस है, मरीन इगुआनास है और सी लाइन्स देखे जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर एक दिन आपके पास पैसे हो और मौका मिले तो इन खूबसूरत जगहों का भ्रमण कीजिएगा। वो है सेशेल्स, बोरा बोरा, मालदीव्स, पलावन और मॉरिशस।

ये दुनिया भी कैसी दुनिया है, कहीं कहीं पर लोग खाने के लिए मोहताज है, भीख मांगते हैं भोजन के लिए, कहीं कहीं पर लोग इतने धनवान हैं, इतना पैसा उनके पास, माय गुडनेस। दुबई में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। यह एक करोड़पति व्यक्ति है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, सोना है, चांदी है, और इसका जो घर है आप देखेंगे तो लगता है जैसे क्वीन एलिजाबेथ का महल, उससे भी ज़्यादा बड़ा, क्या बात है। सो यह नाम याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई का सबसे धनवान व्यक्ति। वो एक शेख है, उसके पास नौकर चाकर है, गाड़ियां है, और उसके घर में लियोपॉड्स है। यस, जानवरों से इतना प्रेम है कि वो जानवर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पालतू जानवर पाल रखे हैं। वो लियोपॉड्स के साथ अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखता है। सो अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो टाइप कीजिएगा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, आप देख पाएंगे व्हाट टाइप ऑफ लविश लाइफ ही लिव्स। जी हाँ, बहुत ही धनवान व्यक्ति है ये। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो बहुत ही धनवान हैं।

Think of the

0: biggest unanswered question is, where is the money?
1: जहन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उनकी मौत हो जाती है, यस। और दिल का जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, द बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड आज फॉलोज, यहाँ दुनिया के प्रसिद्ध हार्ट सर्जन भारत में है, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, शी द बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया। हरि नारायणा हेल्थ के फाउंडेशन रिनाउंड कार्डियक सर्जन है, लार्ज स्केल में कार्डियक सर्जरी को कंपेरेटिव अफोर्डेबल बनाने का मॉडल बना है और कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी और हेल्थ केयर डिलीवरी के फील्ड में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। नंबर टू पे है डॉक्टर टिरोन डेविड, कनाडा के डॉक्टर है, हार्ट सर्जन, और उनकी

प्रोसीजर उनका नाम पर है जो aortic valve को प्रिजर्व करते हुए aortic root replacement के लिए widely known है. तीसरे स्थान पे है डॉक्टर एलन कॉर्पोंटिए, जी हाँ, फ्रांस का डॉक्टर है, हार्ट वाल्व सर्जरी के पायनियर्स में से एक हैं, और कॉर्पोंटिए एडवर्ड्स वाल्व टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका. रिकंस्ट्रक्टिव मिट्रल वाल्व सर्जरी को एडवांस करने वाली है. नंबर फोर पे है डॉक्टर माइकल बेके, यूएसए से है, अमेरिका से, मॉडर्न कार्डियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के लिए मानी जाती है और उनका हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. नंबर पाँच में डॉक्टर डेंटन कोले, यूएसए से, और ये जो सभी डॉक्टर के नाम हमने आपको बताए हैं, दे आर द बेस्ट हार्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, और बहुत से लोगों के दिल अगर वो बीमार होते हैं तो ये डॉक्टर उन्हें ठीक कर सकते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू से गुड बाय. इसी गीत के साथ ही ऐसा भी होता है, प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है. 4 बजे सुनेंगे फ्लैश न्यूज़, के बाद डॉक्टर पूनम से फिल्मी गज़लें कार्यक्रम, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा. शाम के 3 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो मच. हमारी आपकी मुलाकात होगी ट्यूसडे की रात को, जी हाँ, 9 बजे से 11 बजे तक रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंज पर भोजपुरी तड़का के साथ. So let me wish you all a happy, very happy and pious Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi ki hardik shubhkamnaye. Ganpati Bappa ka aashirwad aap sab par bana rahe. Aur ek mulaqat tak hame dijiye ijazat. Aur Jay Pratap Singh ki ore se pyar bhara namaskar. Love you all. God bless. Namaste. Heartbeat.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक शाम के 4 बज रहे हैं।
4: सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
5: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। सुगेज में आज सुबह लगभग 40 वर्ष की उम्र के एक मोटरसाइकिल चालक की एक भारी वाहन से टक्कर के बाद मौत हो गई। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने भारी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रक के पिछले पहिए से जा टकराया। दुर्घटना के 5 मिनट बाद सामू घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन मोटरसाइकिल चालक को बचाया नहीं जा सका।

0: इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 43 मोटरसाइकिल चालकों की जान जा चुकी है। देश की सड़कों पर अब तक की कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपये के प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रही हैं। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के अनुसार इस नए उपाय को लागू करने के मुख्य कारण पार्सल की संख्या में भारी वृद्धि और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत है। पिछले साल मॉरिशस के लोगों ने 17 लाख से अधिक पार्सल आयात किए थे। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए हिंद महासागर आयोग और सिकाद के बीच 3 वर्षों के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया और इस समझौते पर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसके माध्यम से इस सेक्टर में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस साझेदारी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर कृषि को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान को मजबूत करना है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल टैंकरों को दी जाने वाली सैन्य सुरक्षा, खासकर हवाई सुरक्षा के समय को सीमित कर दिया है। ये कदम इस अहम समुद्री रास्ते पर चलने वाले जहाजों पर ईरान के हमलों में बढ़ोतरी के बाद उठाया गया। उधर अमेरिकी सेना ने टेक्सास में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के 2 दिन बाद अपने सभी अपाचे हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अभियानों को अस्थायी रूप से स्टैंड डाउन करने की घोषणा की है। इस हादसे में उड़ान पर सवार दोनों सैनिकों की जान चली गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। सायंकालीन समाचार बुलेटिन आप 6 बजे सुन पाएंगे विस्तार के साथ, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आदाब नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं RM3 पर, मैं हूँ आपके साथ पूनम। दोस्तों, रविवार की ये शाम, हफ्ते भर की थकान के बाद जब आप बैठते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है और ऐसे में अगर कोई गजल कानों में पड़ जाए, दिल कह उठता है हाँ बस यही तो चाहिए था। आज की महफिल में सब कुछ है, इश्क भी है, दर्द भी है, यादें भी हैं और उम्मीद भी है, क्योंकि ज़िंदगी इन सब से मिलकर बनती है और गज़ल इन सब को एक साथ कह देती है। तो आइए, ये 1 आवर सिर्फ फिल्मी गज़लों के नाम शुरू होता है अब।
1: RM3 रेडियो।

दोस्तों 4:17 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। सबसे पहले एक ऐसे शायर की हम बात करेंगे जिन्होंने जब भी लिखा बस ऐसे ख्यालों में लिखा, और जब भी उनके ख्याल बने तो कुछ अलग से ख्याल हुए। जैसे हम लोग ज़िंदगी में होते हैं, हमारे ख्याल अलग होते हैं, पर कुछ लोगों के ख्याल अलग तरीके

0: नजर।
1: दोस्तों 4:23 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ, जहां हम पर बात करते हैं शायरों की, शायरा की, और बहुत खूबसूरत गज़लें आपके लिए लेकर आते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो गज़लें हैं इनकी कुछ अलग ही, कुछ इनकी सीमा तो कोई होती नहीं, क्योंकि ये इतनी डीप थॉट में चले जाते हैं जो हमारे शायर होते हैं। कई बार उनको एहसास होता है कि हमने खुद क्या लिख दिया, पर उन्हें एहसास नहीं होता कि जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे दिल और दिमाग पर उसका क्या असर होता है। इसी तरीके से एक हमारे शायर हैं जिनका नाम है जोश मलिहाबादी, लिखते हैं, तुम आए तो लगा जैसे बहार आई हो जिंदगी में, तुम आए तो लगा जैसे बहार आई हो जिंदगी में, तुम्हारी एक मुस्कान में हजार खुशियां छुपी हुई हैं। क्या बात है, जब कोई ज़िंदगी में बहार की तरह आता है ना, तो उसे जाने मत दीजिए। आज उस इंसान को बताइए कि तुम मेरी बहार हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, और जब उसी ज़िंदगी के अंदर उस बहार में कहीं कुछ खटास आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिल दुख जाता है, वो बहार कहीं ना कहीं छुप जाती है, मर जाती है, उदास हो जाती है। यही तो शायर की बात होती है, हम तो बस वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ नज़र आती है, और शायर वहाँ तक जाता है सोच में कि दुख भी आए तो उसको कैसे खुश करना है।
0: RM3 Radio.

0: अब हम बात करने वाले हैं अंजुम रहबर की, एक ऐसी शायरा जिनको कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अवार्ड से नवाजा। इंदिरा गांधी हमेशा एक ही बात कहती थी कि जिस तरीके से अंजुम लिखती है वैसा कोई नहीं लिख पाता। लिखती है, तुमसे मिलकर लगा जिंदगी में कुछ बाकी था, तुमसे मिलकर लगा जिंदगी में कुछ बाकी था, तुम्हारे होने से हर लम्हा कीमती हो गया। सच्ची तो है कि कभी कभी एक मुलाकात पूरी ज़िंदगी बदल देती है, और वो इंसान जो ज़िंदगी की कीमती सबसे ज़्यादा कीमती बन जाता है, सबसे ज़्यादा उसकी कीमत का एहसास ही नहीं होता, उसे दुनिया में सबसे ऊपर सबसे ख़ास जगह पे दूसरा इंसान उसे रख देता है और कहता है कि तुम इतनी ख़ास हो कि शायद तुम्हें देखने से हर तोहफा छोटा लगे, और तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक नवाब, एक ऐसा तोहफा हो। शायद मुझे ज़िंदगी में चांद सितारे भी इतने प्यारे नहीं जितना तुम मुझे प्यारी हो। यही होती है ज़िंदगी के अंदर एक खास इंसान की जगह।
1: RM3 Radio.

हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा. अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर और अपनी दिल की इच्छा बता सकते हैं. कोई आपकी कोई फेवरेट ऐसी गज़ल हो जो इस टाइम को, इस मूड को थोड़ा सा और अपलिफ्ट कर दे. तो हम तो यही कहते हैं हमेशा से कि ये जो MBC है हमेशा आपके साथ हर वक्त साथ साथ रहता है, और जहाँ पर बात हो शेर और शायरी की वहाँ पर पूनम साथ होती है. तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी शायरा की जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बट सबसे पहले उन्होंने लिखा, उनकी गज़लें जो थी वो बहुत अलग थी. लिखती हैं, ज़िंदगी गुजरी तो एहसास हुआ, ज़िंदगी गुजरी तो एहसास हुआ, कुछ लम्हे थे जो सच थे. ज़िंदगी गुजरी तो एहसास हुआ, कुछ लम्हे थे जो सच थे, बाकी सब धुआं था, बाकी सब

0: धुआं था पर वो लम्हे आज भी दिल में रोशन है। कितना सुंदर लिखा है इस, बाकी सब धुआं था, यानी धुआं यानी कि वो अचानक से कहीं ना कहीं वो चीज़ गायब हो जाती है। और ये आज़रा नकवी लिखती हैं। तो ज़िंदगी में कुछ जब सब कुछ गुजर जाता है, जब ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जब निकल जाते हैं और एहसास होता है कि मैंने तो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने बारे में कुछ देखा नहीं, खुद को जाना ही नहीं, खुद को पहचाना ही नहीं, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, एहसास तभी होता है जब एक समय गुजर जाता है और एहसास होता है क्यों नहीं मैंने उस समय उस चीज़ को संभाल लिया, क्यों नहीं उस समय मैंने उस समय को रोक लिया। चाहे समय रुक पाता नहीं पर फिर भी एहसास ज़रूर होता है कि काश वो समय वापस आ जाए। और जब आता है या नहीं आ पाता है तब सिर्फ दिल में क्या एक बात उठती है, एक टीस जगती है कि काश उस समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता मेरे लिए और सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: RM3 Radio.

दोस्तों 4:46 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शायर की जिनकी लिखाई जो कि बहुत ही खास जगह रखती है, चाहे उर्दू शायरों के बीच में, चाहे शायरी के बीच में, या उन्हें कह लो किसी की ज़िंदगी के लिए। लिखते हैं मोइन अहसन जज़्बी। दिल में उसकी याद है, आँखों में उसका नूर है। दिल में उसकी याद है, आँखों में उसका नूर है। वो पास हो के भी दूर हो, पर मेरे दिल में ज़रूर है। इश्क में ये फासला कोई मायने नहीं रखता, इश्क में ये फासला कोई मायने नहीं रखता। जो दिल में बस गया वो हमेशा मेरे करीब है। इश्क में फासला कोई मायने नहीं रखता, जो दिल में है वो हमेशा करीब है। यही तो एक शायर चाहता है। चाहे कितने भी फासले आ जाए और कितनी भी दूरियां आ जाए, पर दिल में वो इंसान हमेशा रहना चाहिए। इसी तरीके से हम हमेशा कहते हैं आपके जो सुख और दुख हैं, चाहे आपके कितने भी छोटे हों या बड़े हों, उसको अपने दिल तक ना आने दीजिए। वो बस कहीं ना कहीं ऐसी जगह में छुप जाने चाहिए जहाँ पर आपको एहसास ही ना हो कि आपके पास कोई दुख है भी। और यही गज़ल का मेन मोटिव होता है कि आपकी गज़लों के अंदर एहसास दिला देता है कि दुख कितना भी बड़ा हो हमेशा छोटा ही लगना चाहिए। क्योंकि शायरों के पास इतने बड़े बड़े दुख आए, चाहे वो लिरिसिस्ट हों, चाहे वो मूवी डायरेक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनको एहसास होता है दूसरे इंसान की फीलिंग्स का, और वही फीलिंग्स जो हैं वो अपनी कहानी में डालते हैं, और वही अपनी नज़मों में डालते हैं, गज़लों में डालते हैं, शेरों में डालते हैं, शायरी में डालते हैं। और यही हम सब कहते हैं आप सबसे कि फिल्मी गज़लें आती ही इसलिए है कि इधर आपके लिए बहुत सारे वो नज़्म आते हैं जो आपके दिल को खुश करते हैं। तो इन्जॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल नज़्म को जगजीत सिंह की द्वारा गाई हुई। पर इसके साथ ही शायद टाइम भी ओवर हो जाएगा, अगर हुआ तो

ये घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ये तो गजल का जादू है, वक्त को भुला देता है और एहसास को जिंदा कर देता है। आज जो भी दिल में उठा उसे रोकिए मत, किसी की याद करना हो कर लीजिए, कुछ कहना हो कह दीजिए, कोई दूर हो एक दुआ दे दीजिए, बस यही तो ज़िंदगी है। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी और बहुत ही प्यारे प्रोग्राम के साथ गए, और उसके बाद अब मेरे बाद आने वाली हैं शीतल जी, और मैं तो यही कहूँगी उनका साथ भी ज़रूर दीजिएगा। और अगले रविवार शाम 4 बजे फिर हम मिलेंगे। यही थी असली गज़लें RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी आपके साथ पूनम। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मेरी तरफ से बाय बाय।

0: RM3 Radio. Radio.
1: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
0: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।

भारत के एक साधारण हिंदुस्तानी पर्दे पर आते ही अपने अदाकारी के बल पर लोगों को इतना आनंद पहुंचाया जिससे आज भी लोग उनके दीवाने हैं। चाहे वो जंजीर को तोड़ते हुए या फिर हर शोले को पार करते हुए बड़े अभिमान के साथ हर दीवार को उन्होंने पार किया। कभी कभी कोई कहता है कि नसीब नसीब की बात है। वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे, एंग्री मैन से होते हुए प्यार के खूबसूरत सिलसिला को बड़े शान से आगे लेकर बढ़े। कभी भूतनाथ तो कभी शहंशाह तो कभी तूफान या कभी कभी जादूगर भी चुपके चुपके बन जाते थे। कभी खुशी कभी गम हो, इन्होंने अपना कर्तव्य बड़े खूबसूरती से निभाया। चाहे वो बाबुल का हो, अपने बागबान को उन्होंने बड़ी खासियत से पेश किया। वे बन गए मुकद्दर का सिकंदर, इस बात का खुदा गवाह है। The finest actor of Indian cinema, one and only Amitabh Bachchan साहब। हिंदी सिनेमा की सरकार को हम तहे दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं।

सारा जमाना हसीनों का दीवाना, लेकिन ये एक ऐसे शख्स रहे जिनके पीछे हर कोई दीवानी है। जहां वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है।

ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में 1973 में म्यूजिकल ड्रामा अभिमान। फिल्म अभिमान को हम ज्यादा इसके गीतों से याद करते हैं, जहां म्यूजिक कंपोजिशन एसटी बर्मन ने दिया और गीतों को लिखा मचरू सुल्तानपुरी ने। लुटे कोई मन का डगर बन के मेरा साथी, लता जी और मनहर उदास ने इस गाने को बड़ी खासियत से पेश किया। ये गाना पिक्चराइज हुआ अमिताभ बच्चन और जया भादुरी पर।

एक्शन कॉमेडी मूवी 1984 की रही शराबे कॉमेडी रोल के लिए बहुत जाने पहचाने हैं अमिताभ बच्चन साहब। फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रधान ने काम किया। इस जोड़ी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, खासकर इस फिल्म के गीतों से आज भी लोग प्रभावित होते हैं।

की रीमेक और बंगाली फिल्म रही आकाश कुसुम की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ मुश्मी चटर्जी मौजूद रही। आर डी बर्मन ने संगीत दिया। रिमझिम गिरे सावन 1979 की फिल्म रही मंजिल।

हर एक दौर से गुजरते हुए अमिताभ बच्चन ने नए कलाकारों के साथ काम किया। मुश्मी चटर्जी भी मौजूद रही। फिल्म मंजिल जो

0: अमिताभ बच्चन और जिना तमान ने कई फिल्मों में एक साथ काम किए, जैसे डॉन, लावारिस, द ग्रेट गैम्बलर, सत्य पे सत्ता, पुकार में भी उन्होंने एक साथ काम किया। फिल्म पुकार जो कि आई थी 1983 में, इस फिल्म में खास बात ये रही कि एक गाना रहा जो कि अमिताभ बच्चन ने खुद गाया, तू मैके मत जाइयो। आर डी बर्मन ने इस खूबसूरत गाने को संगीत दिया, कलाम रहे गुलशन बावरा के।
1: जूली, देखो, हाँ, मैके, नहीं, तू मत, मैके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस, बेबी,

अमिताभ बच्चन और राखी अनगिनत फिल्मों में साथ काम किए, लेकिन फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में इस रियल कपल का टाइमलेस गाना एवरलास्टिंग वॉइस ऑफ किशोर कुमार, जहां उन्होंने प्लेबैक दिया अमिताभ बच्चन के लिए, एक सोलफुल गाना रहा ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अमिताभ बच्चन और राखी पर पिक्चराइज मुकद्दर का सिकंदर का ये खूबसूरत गाना यादें प्रोग्राम में।

रोमांटिक ड्रामा मूवी सिलसिला, अ टाइमलेस क्लासिक, देखा एक ख्वाब दो सिलसिले हुए, ये भी कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। फिल्म सिलसिला एक ऐसे फिल्म रही जिससे आज भी लोग प्रेरित होते हैं, जिससे आज भी लोग अपने प्रेम कहानी सुना जाते हैं।

0: अ मास्टरपीस ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपने किरदार के साथ कुछ शायरी भी सुना गई। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला कुछ हद तक उनकी जिंदगी की कहानी पर आधारित है। हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन रील कपल अमिताभ बच्चन और रेखा, यूं ही साथ चलते चलते, एक न भूलने वाले फिल्म द मैजिक ऑफ सिलसिला, यूं ही साथ चलते चलते, एन इटर्नल आर्टिस्टिक मास्टरपीस ब्यूटीफुली पेन बाय जावेद अख्तर, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, द सोलफुल बैकबोन ऑफ द फिल्म, द मैजिकल वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन साहब,
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

जयाप्रदा और मीनाक्षी शेषाद्री ये दोनों कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ आए फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में 1981 यानी कि 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रोमांटिक एक्शन मूवी डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई, लता जी की आवाज गूंजे मीनाक्षी शेषाद्री के लिए।

अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी इन दोनों ने एक साथ काम किया फिल्म खुदा गवाह में। 1982 इंडियन एपिक क्राइम एक्शन मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मुकुल एस आनंद। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी इन दोनों के किरदार इस

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

रविवार 13 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल एम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया एंड ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। आज सुबह हसोगेज में एक भारी वाहन के टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। पहली सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की प्रतिमा की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। विदेशी स्तर पर ब्रिक्स समिट का समापन

0: हो गया। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर पड़ता है ज्यादा असर। नमस्कार और आदाब, सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि कल आम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया और ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका ने इस परियोजना के तकनीकी स्तंभ को विकसित करने के लिए OTL ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य है मॉरिशस को एक प्रमुख ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म और अफ्रीकी व अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए एक प्रवेश द्वार बनाना। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: शनिवार 12 सितंबर को आम्स्टरडाम में इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेंशन के दौरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका मीडिया क्राफ्ट और RTL के साथ जुड़े ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप ने मॉरिशस में एक मीडिया सिटी लॉन्च करने की अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। पॉम्पलीमिसिस में मूल ढांचे में ऑडियो विजुअल चैनल की कई कड़ियां मौजूद होंगी, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजिंग सेवाएं। इलाके में मॉरिशस जिस जगह पर स्थित है ये परियोजना के लिए केंद्रीय पहलू, मीडिया सिटी मॉरिशस के CEO नजीब गुइया ने कहा। मीडिया सिटी मॉरिशस एक कॉन्टिनेंटल हब है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी है। मीडिया इंडस्ट्री के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के लिए अफ्रीकी महाद्वीप की ओर जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एवं क्रिएटिव ऑपरेटरों ने बहुत पहले से ही अपने अफ्रीकी विभाग कायम कर दिए हैं। कई हबों में जैसे कि दुबई मीडिया सिटी है, मैनचेस्टर है, ब्रसेल्स और पेरिस में भी आज मीडिया सिटी मॉरिशस इन्हें उनका प्रॉक्सिमिटी हब प्रदान कर रहा है। ठोस रूप से देखा जाए तो हब में 3 स्टूडियोज होंगे, बड़े प्रोडक्शंस के लिए 1000 वर्ग मीटर, मैगजीन्स के लिए 5000 वर्ग मीटर और न्यूज तथा लाइट फॉर्मेट के लिए 250 वर्ग मीटर। इस मीडिया डाटा सेंटर की बदौलत अफ्रीकी ऑपरेटर अपने कंटेंट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, इन्हें स्टॉक कर सकेंगे और वितरित भी कर सकेंगे। सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी तथा गतिविधि बरकरार रखी जाएंगी। इस स्थल पर स्थायी रूप से कार्यरत एक सुपरविजन सेंटर होगा और साथ में पोस्ट प्रोडक्शन की क्षमता और मल्टी प्लेटफॉर्म प्रसारण भी। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप के CEO फ्रेडरिक फेवेज ने कहा, ये विचार कर रहे थे कि एक सोवरेन सेंटर हो अफ्रीका के लिए, मकसद है पूरे अफ्रीका इससे लाभ उठाएं, यूरोप में ग्राहकों को प्रस्तावित सेवाएं अफ्रीका के लिए भी प्रदान करें, अफ्रीकी दर्शकों, ग्राहकों एवं साझेदारों के लिए। प्रशिक्षण की एक अहम जगह होगी, क्षमताओं का क्रमिक हस्तांतरण और दूसरे चरण में ऑडियो विजुअल पेशे के लिए समर्पित एक टेक्निकल स्कूल भी। इस परियोजना का उद्देश्य है मॉरिशस को एक टेक्नोलॉजिकल मंच की तरह और कॉन्टिनेंटल मंडी की ओर एक द्वार की तरह निर्धारित करते हुए एक उभरते हुए सेक्टर में अफ्रीका की क्षमताओं को बढ़ाना।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आज सुबह सोगीज में एक भारी वाहन से टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, तभी वह ट्रक के पिछले पहिए से जा टकराया। हादसे के 5 मिनट के भीतर ही सैमी मौके पर पहुंच गई थी, परंतु उनकी जान नहीं बचा सकी। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यह 43वें मोटरसाइकिल चालक है और हमारी सड़कों पर कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। काविन तापेसा की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: सुगैज में रेजवी की ओर आज सुबह 10:15 बजे एक भारी भरकम लॉरी और एक मोटरसाइकिल एक दुर्घटना में संलग्न। दुर्घटना स्थल पर प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मोटरसाइकिलिस्ट ने लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉरी के पीछे वाले पहिए के

0: टकरा गई। लॉरी चालक को पता ही नहीं चला कि दुर्घटना हुई है और 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाकर वो रुका। सामी दुर्घटना के 5 मिनट बाद ही पहुंच गया स्थल पर, लेकिन सेकोंस्टांस सैफे के रहने वाले 40 वर्षीय मोटरसाइकिलिस्ट को सर पर गहरी चोटें लगी और अस्पताल जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय फाउस लेन पर मौजूद एक गवाह ने बताया कि उन्होंने क्या देखा।
1: Camion à chilo 3ème lane, motocyclette tissis à gauche au lit, derrière camion, il passe pour trop lisse de ce long de mot. Je peux coller le camion là, arriver dans les lignes redoublées. Mais le camion, vu qu'il est la montante, ligne ralentie, à vitesse motocyclette, il est une batterie en plein à gauche, il est en bas, il s'est allé là.
0: साल के शुरुआत से हमारी सड़कों पर 109 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 43 मोटरसाइकिलिस्ट हैं।
2: कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ सड़क हादसों के पीड़ितों के परिवार आज तक जांच पूरी होने और जिम्मेदारियां तय किए जाने का इंतजार कर रही है। ये लंबा इंतजार उनके दर्द को और बढ़ाता है और न्याय पाने की उनकी कोशिशों में देरी कराता है। डीपीपी के कार्यालय के अनुसार कानून के शासन वाले एक देश में इस तरह की देरी सामान्य नहीं रही। 1 सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रही है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के अनुसार इस नए उपाय को लागू करने के मुख्य कारण पार्सल की संख्या में भारी वृद्धि और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत है। पिछले साल मॉरिशस के लोगों ने 17 लाख से अधिक पार्सल आयात किए थे। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
3: घंटों तक पार्सलों का आना जाना रहता है। रोज बड़ी तादाद में इन्हें कई देशों से लाया जाता है। पार्सल पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदार अफसर राधिका रामलाल बताती हैं, जब हवाई अड्डे से पार्सल यहाँ आते हैं तो हमें एक एक करके हर पार्सल को स्वीकार करना पड़ता है। हर एक की स्कैनिंग की जाती है। कस्टम अफसर रिलीज या डिटेन होने वाले पार्सलों का फैसला लेते हैं। हम सॉर्टिंग करते हैं, फिर सभी इलाकों के डाक घरों की ओर इन्हें भेजते हैं। पोस्टमैन डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने तक हर पार्सल को कई मरहलों से लाजमी तौर पर गुजरना पड़ता है। कई ऑपरेटर डिलीवरी करते हैं। मॉरिशस पोस्ट लिमिटेड सबसे ज्यादा पार्सलों का संचालन करने वाली कंपनियों में से एक है। हर महीना डाकघर 20,000 पार्सलों का ट्रांसफर करते हैं। CEO Dr. जयराज ईटू बताते हैं, आज डाकघर को विदेश से कई प्रकार के पार्सल मिलते हैं, डिब्बों में और छोटे पैकेट्स में। स्मॉल पैकेट्स को पोस्टमैन द्वारा भेजा जाता है। कस्टम सेवाओं के मुताबिक सन 2023 में 4 लाख से ज्यादा पार्सल विदेश से मंगवाए गए थे। सन 2024 में ये आंकड़ा 9,20,000 के पार दर्ज हुआ और 2025 में 1.7 मिलियन से ज्यादा पार्सल मॉरिशस लाए गए थे। 1 सितंबर से टेमू, अली एक्सप्रेस, शीन और दीगर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीदारी की कीमत ज्यादा है। एमओआरए के सेक्शन हेड जगदीश सिंह नंदू बताते हैं, विदेश से मंगवाए जा रहे पार्सल बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोगों की बुरी नीयत है जो इन पार्सलों में गैर कानूनी चीजें लाते हैं, जैसे ड्रग्स। इसीलिए 150 रुपए का प्रोसेसिंग फी लागू है। सामानों की कस्टम प्रक्रियाओं के लिए एमओआरए को अधिक संसाधनों की जरूरत है, जैसे अफसर, मशीनें, स्निफर कुत्ते
4: वगैरह। ₹150
3: का नॉन रिफंडेबल फी हर पार्सल पर लागू है जो बिक्री के मकसद से मंगवाए नहीं गए हैं।
2: क्रिस स्टॉफ बारानोव्स्की के लिए उम्र सचमुच सिर्फ एक नंबर है। 88 साल की उम्र में इस महान पोलिश नाविक ने एक अविश्वसनीय चुनौती शुरू की है। सन 1920 के दशक की क्लासिक डिजाइन वाली अपनी मिटोरिया पर सवार होकर अकेली अपनी तीसरी दुनिया की यात्रा पूरी करना। जी हाँ, पिछले साल

0: के अंत में कैनरी द्वीप समूह से रवाना होने के बाद उन्होंने हाल ही में कैनरी द्वीप समूह लौटने से पहले हिंद महासागर को पार किया और मॉरिशस में पड़ाव डाला। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: 88 वर्षीय क्रिसिस्टोफ बरनौस्की घबराते नहीं हैं। पोलैंड के ये नेविगेटर इन दिनों अकेले दुनिया की अपनी तीसरी सैर पर हैं। 15 मीटर की ऊंचाई वाले मेटेओ पर सवार 1920 की ही तरह के यास्ट की तरह इसे बनाया गया है। उन्होंने अपनी सैर के 50% भाग से अधिक पूरा कर दिया है। 2025 के नवंबर महीने में वे स्पेन के पास कनारी टापुओं से समुद्र में निकले। अटलांटिक में पहली बार गुजरने के बाद से वे पनामा कैनाल से होते हुए प्रशांत महासागर में पहुंच गए। इसके बाद वे ताहिती में रुके, फिर फिजी टापुओं में। इसके उपरांत वे ऑस्ट्रेलियाई तटों तक पहुंच गए। वे कुछ सप्ताह तक डार्विन में भी रुके। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और मास्कारेंस के बीच का फासला तय करना उनके सफर के सबसे अहम चरणों में से एक। लेकिन क्रिसिस्टोफ बरनौस्की के लिए विशाल समुद्री स्थल के कोई राज ही नहीं। 1972 और 1999 की कामयाबी के बाद ये धरती की उनकी तीसरी सैर है। वे कहते हैं,
2: Solo sailing is difficult because you are not supposed to sleep too long.
1: अकेले समुद्र में नाव चलाना काफी मुश्किल है क्योंकि लंबे समय तक सो नहीं सकते हैं। अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि कब सोने के लिए थोड़ा समय मिले, आराम कर सके। जब परिस्थितियां कठिन हो तो जैसे तैसे ये करना ही चाहिए, हमेशा आसान नहीं है।
2: And always waiting for some sleep. So when I come on land, then I'm sleep long.
1: लकड़ी से बने अपने इस ढांचे की पूर्ण जांच के बाद और साथ में 3-4 सप्ताहों के ब्रेक के बाद वे अपने मेटियो पर सवार फिर से निकल पड़ेंगे। रुख दक्षिण अफ्रीका की ओर। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वे ड्रबन में रुक सकते हैं, जिसके बाद फिर से अटलांटिक की ओर प्रस्थान करेंगे, कनारी टापुओं की ओर। समझा जाता है कि नवम्बर महीने और दिसंबर महीने के बीच
0: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की मूर्ति की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। ये क्रिया केवल धार्मिक नहीं अपितु इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। अपने घर में मूर्ति स्थापित करके प्रत्येक भक्त भगवान गणेश के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। सेवास्तोपोल में भी भक्त मूर्ति स्थापना के लिए एकत्र हुए हैं इस वक्त, और जो भक्ति और भावनाओं से सराबोर पल है। और इस वक्त हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सेवास्तोपोल में है और वहां पर किस प्रकार का वातावरण है, आइए उनके साथ सुनते हैं। सबसे पहले नमस्ते याचना।
3: नमस्ते अभी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, अभी हम सेवास्तोपोल गांव में हैं, जहाँ पर कई परिवार एक साथ एकत्र हुए हैं और कई नौजवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। पड़ोसी सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह पर 107 छोटी मूर्तियों और एक बड़ी मूर्ति, साथ में गौरी माँ की मूर्ति भी है यहाँ पर, इन सब की स्थापना की गई है। इससे पहले वे लोग वहाँ गए थे जहाँ पर उन्होंने मूर्ति बनवाया है। वहाँ से मूर्ति लेकर वो लोग सेवास्तोपोल आए, जहाँ पर उन्होंने जुलूस में भाग लिया। जुलूस में भी गणेश भगवान की जय जयकार की गई और साथ में उनके गुणगान के लिए झांकरी भी किया गया, और सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर अभिषेक करने आए। यहाँ पर मूर्ति स्थापना से पहले मूर्ति अभिषेक भी किया गया, और सब लोग भव्य तरीके से कल गणपति जी के जन्मोत्सव का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। कल पूरी रात यहाँ पर भी ऐसी ही बप्पा की आरती उतारी जाएगी और फिर उसके बाद विसर्जन किया जाएगा।
0: इन सभी जानकारियों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं याचना। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। केवल 14 साल की उम्र में वे मराठी समुदाय का एक खास चेहरा बन चुके हैं। मोफेचिल में मयूरेश बालू एक युवा नियुक्त पंडित

के रूप में अपनी पहली प्रार्थनाएं संपन्न करा रही हैं। ये लगन उनमें मात्र 3 साल की उम्र में ही पैदा हो गई थी, जिसे वह आज अपनी पढ़ाई और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। 2 सदी पहले भारत से जहाज रवाना हुए थे जो अपने

0: और एक पूरी विरासत लेकर गए थे। शुक्रवार 11 सितंबर को दुनिया भर से आए उनके वंशज एक ही उद्देश्य के साथ मॉरिशस में एकत्र हुए, इंडियन डायस्पोरा के भीतर संबंधों को मजबूत करना। यही 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का मुख्य उद्देश्य रहा, जिसमें मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, म्यांमार, भारत और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रविवार 13 सितंबर यानी कि आज को समापन समारोह के दौरान धुंदेव बहादुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान एक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। और हिंद महासागर क्षेत्र ने हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच रूपरेखा समझौते को 3 साल के लिए नवीनीकृत करके अपने सहयोग को और मजबूत किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर एबेन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए और 10 साल से पहले से अधिक समय से लागू इस समझौते से पहले ही इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस साझेदारी का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनुसंधान को मजबूत करना। ज्यादा विस्तार पूजा के साथ।
1: हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच इस समझौते का 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण, क्षेत्रीय कूटनीति और वैज्ञानिक विशेषज्ञता के बीच साझेदारी को और मजबूत करता है। इस समझौते के केंद्र में फ्रेगाद ओई यानी हिंद महासागर में कृषि जोखिमों की रोकथाम और प्रक्रिया प्लेटफॉर्म है। ये एक सहयोगात्मक मंच है जो शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक साथ लाता है ताकि हिंद महासागर के टापुओं को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जा सके। ये हमारी उस प्राथमिकता के अनुरूप है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को विकसित और मजबूत करना है। इसके साथ ही हमारा दृष्टिकोण इससे आगे बढ़कर हिंद महासागर आयोग की एक अन्य परियोजना की ओर भी है, जिसमें कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत मंडी के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस साझेदारी ने पहले ही द्वीपीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान को व्यवस्थित करने और जैव सुरक्षा से जुड़ी कई पहलों को शुरू करने में योगदान दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर कृषि वेधशाला की स्थापना में भी इस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र की कमजोरियों और जोखिमों का बेहतर चित्रण करना है। हमने सहयोग की ऐसी परियोजनाएं शुरू की है जिन्हें विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। इन नेटवर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना था। इनमें स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल थे जिन्हें व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा गया। इसके साथ ही हमारी स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति से जुड़े सवालों पर भी काम किया गया। और आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी आखरी हुई है, जिसका सामना करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस समझौते के माध्यम से मॉरिशस के अधिकारी भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे इलाके में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे टापू में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं मौजूद है। हमारे पास कई प्रयोगशालाएं हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता है। ये एक अच्छी पहल है कि हम अपने आसपास उपलब्ध विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य मिलकर साझा समाधान तलाशना है। इन सभी पहलों का उद्देश्य स्पष्ट है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और पूरे इलाके के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करना।
0: जुमे की रात इस्लामी शकाफती सेंटर पोटली में कौमी की रात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हामिद हजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकद उल मुकरमा सोसाइटी ने MBC के ताउन से इस मुकाबले का एहतमाम किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत को फरोग देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब है जिससे आखिरी नबी

इस कौमी मुकाबले के फाइनल्स में 9 नौजवान थे। अरबी में किरात का मायने है कुरान की तिलावत करना। मुख्तलिफ इलाकों, मदरसों और इदारों से आए 13 से 17 साल की उम्र वाले इन नौजवानों को तजवीद यानी प्रोनाउंसिएशन, मकामात यानी तर्ज और आवाज़ के हवाले से आजमाया गया। एमबीसी के तावुन से मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी ने इस मुकाबले का इनेकाद किया। पोटवी की जुमा मस्जिद से मोहम्मद हमीद रजा जुमन अव्वल आया है।

0: इस पहले इनाम के लिए उसे उम्रा अदा करने का पैकेज और 1000 रियाद मिले।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ब्रिक्स समिट का समापन हो गया है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर असर पड़ता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन में रुकावटों ने दिखाया है कि दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जगह आया संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत मंडपम में सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इस दौरान श्री नरेंद्र मोदी के दोनों ओर चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन नजर आए। कई यूरोपीय देशों में प्रवासियों का मुद्दा चर्चा केंद्र में है और कल इंग्लैंड में भारी मात्रा में हो रहे आप्रवासन के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। अवैध प्रवासियों के आने के बाद से इस देश का तनाव लगातार बढ़ रहा है। उधर स्वीडन में जहां इस रविवार को एक बेहद कड़ा मुकाबला हुआ, दक्षिण पंथी ढड़े ने जीत मिलने पर आप्रवासन विरोधी पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेट्स को मंत्री पद देने का वादा किया है।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, परंतु कल सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, कल रात से मस्कारेन्स की ओर से ठंडी हवाएं बहने लगेगी और एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने से ज्यादा ठंड महसूस की जाएगी। साथ ही साथ 3 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान में गिरावट नोट की जाएगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 6:03 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:07 पर।

के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषुक समाचार सुनते हैं। दिप्लेविस्ट रोड लॉन्ग माउंटेन में, दिप्लेविस्ट रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री गोविंद दत्त दुमन, श्री गोविंद दत्त दुमन जिन्हें सब लोग पंडित जयलाल के नाम से भी जानते थे और जो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के पूर्व पंडित थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2:30 बजे उनके बेटे श्री सुभाष दुमन के घर दिप्लेविस रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रारुद बुबासेम है 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्री प्रकाश देवी जिन्हें सब लोग प्रकाश के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 9 सर चार्ल्स लीज स्ट्रीट रोजेल के पूर्व निवासी थे और साथ ही साथ मगाजें देबी रोजेल के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे ला शापेल ऑन्डोट एलियन सन्स रारुद बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन में, चौरासी साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री अद्वैत रंगतुआ, जिन्हें सब लोग अद्वैत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाक्वा के माराथी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3:00 बजे सैमोतें सुलफेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौराबो के सनातन और कौराबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4:00 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम

शाम के 6:33 हुए हैं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम नमस्कार आदाब। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो के साथ, रेडियो मनोरंजन, और आप इस समय सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में आपका साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कुछ भावगीत आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है, बस आप साथ दीजिए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ श्रोताओं, शाम के 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन। और एक ऐसा खूबसूरत सफ़र जहां अल्फाज दिल से निकलते हैं और सीधा दिल तक पहुंचते हैं। कभी कोई गीत हमें किसी अपने की याद दिला देता है, कभी कोई आवाज़ पुरानी यादों के दरवाज़े खोल देती है और कभी कुछ अनकहे जज्बात। तो चलिए, ये शाम आपके नाम, नंबर है 4028070। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5250620।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: शाम के 7:52 हुए हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन ORM Free Radio। दोस्तों, दिलों की आवाज़ बोलने के लिए कोई दिन नहीं चुनती। डियर लिसनर्स, बस आप ज़रा अपने कान हमें दीजिए ताकि हम आपके दिल की बात सुन सके अपने प्रोग्राम में, और हमारे जो प्लेलिस्ट है आप खूब एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच। चलिए, अगला गाना जाएगा सुदेवी जी के लिए, जो इस समय हमें सुन रही है फ्रॉम वाक्वा, और गाना खासकर वो मांग रही है दीदी ललिता, दीदी सुनीता, कुशल फैमिली, शोभा देवीना, मालेंगा के राम रतन परिवार और हमारे सभी लिसनर्स के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की
1: आवाज 7:37 हुए हैं दोस्तों। कहते हैं ना, दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जहाँ ना कोई शर्त होती है ना कोई मतलब, बस एक दूसरे को समझने का एहसास होता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो खुशी में मुस्कुराए और मुश्किल वक्त में कहे मैं हूँ ना। जी हाँ, तो आज का ये गीत उन सभी खास दोस्तों के नाम जो दूर होकर भी दिल के करीब है। चलिए अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, और खास कर रोहित जी के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा।

जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके ज़िंदगी में आते हैं खुशियाँ लाने के लिए, एक ऐसी खुशी जो आपने कभी मांगे नहीं। डीरो की आवाज़ प्रोग्राम खासकर आप लोगों के लिए और हमारे सभी प्यार करने वालों के लिए, ताल मूवी से लिया गया ये गाना सुनते हैं खासकर नाविद के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: आज बजकर 6 मिनट हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी तो माहौल कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं गणपति बप्पा को स्वागत करने के लिए, और तैयारियां में भी लगे हुए हैं। तो चलिए, यहां पर हमें सुन रहे हैं आतिश, इश्मिता मामा, हमारी प्यारी मौसी जी के लिए जो अच्छे अच्छे खाना बनाती है, बहुत धन्यवाद आपको। सचिन, प्रतिमा, प्रिया, शवीन, भारती, प्रीतम, उर्वशी, सभी परिवार के लिए, सितवल परिवार के लिए, रघुनाथ परिवार के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और खासकर उन सभी लोगों के लिए भी जो तैयारियां में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी आरएम फ्री के साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। चलिए ये गाना आपके नाम

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।
2: आंखें बंद करके बस इस गाने को आप एंजॉय करें। और फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। कभी कभी हम प्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, प्यार में पड़ जाता है। और यहाँ पर खास गाना हम चला रहे हैं रियाना के लिए, जो हमें सुन रही हैं फिनिक्स से।

चलिए 90s फेवरेट हमारे सभी 90s लवर्स के लिए और खासकर गिरीश हरलोल के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं साथ देने के लिए थैंक यू। फिल्म का नाम है श्रीमान आशिक और आवाज़ है कुमार सानू की।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: आठ बजकर 33 मिनट हुए हैं दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन आरएम फ्री रेडियो और ये कार्यक्रम आपके नाम। आप हमें भेज रहे हैं खूबसूरत मैसेजेस, इसके लिए हम आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर गाना जाएगा अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम फिकाउ फ्लैग का गाना, खासकर बेटी अंकुश, बहू अशिमा, पोती अदिया और सभी लोगों के लिए जो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। तो जी हाँ, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। चलिए रोमांटिक गाना को हम जारी रखते हैं। यहाँ पर सैनिक फिल्म से लिया गया साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना आसान नहीं। प्यार वो है जो किसी के मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ ले और किसी की खामोशी को भी समझ ले। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में एक दूसरे का साथ देने का नाम है दोस्तों। तो आज का ये खूबसूरत गीत उन सभी के नाम जिनके दिल में किसी के लिए खास जगह है।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: कभी कभी जिंदगी में कोई एक शख्स इतना खास बन जाता है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है। उसकी एक मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, उसकी एक आवाज़ चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और फिर दिल बस इतना कहता है, तुम ही तुम हो मेरी ज़िंदगी में। तो ये खूबसूरत गीत उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, उनका

खास लोगों के लिए जो हमारी जिंदगी को प्यार से भर देता है और यहां पर खास गाना हम चलाएंगे दारेन श्वेता रवीश प्रिशा लवशा और आपादू फैमिली जो रहते हैं रोशनवा

तू लगे चांद सा टुकड़ा। चलिए बहुत ही प्यारा गीत विपिन सचदेव की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद।

0: कहाँ।
1: चलिए ये गाना उन सभी लोगों के नाम जो जुड़े हुए हैं साथ में, ऐसे ही साथ देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमारे साथ गुनगुनाते रहिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:15 बज गल बा। नमस्कार श्रोता लोग, आज तो आप सब लोगों का स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। अच्छा, साथ देने खातिर बहुत धन्यवाद। उषा तोहर संगे अभी ले रात के 11 बजे ले नंबर वा घुमावा 402-85-85 और अपन गाना की मांग बेझिझक से करिया। तो चला सुना नोयन के गावल गीत सुना जा।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:30 बज गए बात अच्छा वाकवा की ओर से अमृता जी जो हमनी के सुनत आई बखत और गाना मांगत वंजा अपन खातिर अपन पति देव खातिर और बीता कुशल खातिर नीरज गुप्ता मधु के गावल गीत आधा रात।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:40 हो गल बा ललिता जी खातिर जन हमनी के सुनता थ्रियोले से गाना मांगा तवंजा विश्वानी दीपवा के गावल गीत और गाना खासकर बहन सुदेवी ज्ञानी मीता छोटी दीदी दीदी प्रभावती आत्माराम भैया और सुखलाल मौसी खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:03 हो गल बा और चला अगला गीत जलसा लाल बा किशोर की मियाँ के गावल गीत। ये गाना अमृता जी खातिर जोन रहिला पीतू और ये बखतम नी के सुनाता। गाना अपन खातिर विशान, मीनाक्षी, पूनम, सोनिया और परी खातिर और खासकर सभी गणेश परिवार खातिर।

रात के 10:15 बज गल बा और चला अगला गीत मांटी खातिर जन रहिला मेबग और ये बखत हमने के सुनाता और गाना सुना नोयन के गावल गीत एक बार फिर से गानायकर खातिर और पूरे रघुनाथ परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का।
2: रात के 10:37 चल सुदेवी जी खातिर जन हमने के सुना था वाह क्वा से गाना मांगा था वंजा थयोले के दीदी ललिता खातिर और पूरे कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के स्नेहा कीर्ति और राम रतन परिवार खातिर

रात के 10:52 भाई बहन लोगन बहुत धन्यवाद बा कि इतने बखत हो गए फिर भी आप लोगन साथ देवा तवंजा हमेशा सहयोग देते रहिया सबके योगदान से ही एकता से ही मानवता की प्रगति होवेला शुभ रात्रि नमस्कार

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

ये समा तो हमें प्यार का समा लग रहा है, ये समा तो हमें इंतज़ार का समा लग रहा है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं हूं वेदिता और आप सबों का सुनहरे पल कार्यक्रम में स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे खूबसूरत गीतों का मज़ा लेने के लिए तैयार भी हैं।

सुनहरे पल के सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का मैं विनीता स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, प्यार जो होता है ना, कभी कभी ये एक तरफा होता है। जी बिल्कुल, कभी कभी हम दिल की बात कह नहीं पाते हैं और उस प्यार को बीते कितने साल बीत जाते हैं, बिल्कुल इन पुरानी गीतों की तरह। आज भी जब ये गाने चलते हैं तो हमें वो पल याद आता है, लेकिन दिल में एक सवाल होता है कि काश हमने दिल की बात कह दी होती तो आज शायद जिंदगी अलग होती। खैर, चलिए यहाँ पर अफसोस नहीं करना, यहाँ पर साथ देना और गुनगुनाते रहिए हमारे खूबसूरत पुराने गाने।

सुनहरे पल के जितने भी हमारे प्यारे श्रोता हैं, आप सबों का स्वागत करती हूं मैं वेदिता। बताइए कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक। पुराने गाने पसंद है ना आपको, जानती हूँ, इसीलिए तो लेकर आए हैं आपके लिए गाने। वैसे इन गीतों के साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ना, मैं जानती हूँ। यादें ही तो बनके रह गई हैं पुराने गाने, तो चलिए इन यादों को फिर से महकाते हैं और गीतों को फिर से गुनगुनाते हैं।

लिखने वाले तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं भाई, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ दिल की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। वैसे किसी के दिल के अंदर अगर देखे ना तो पता नहीं चलता कि किसके दिल में क्या चल रहा है। हमें पता है आपके दिल में क्या चल रहा है, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सुनहरे पल, जहाँ पर खूबसूरत गाने आप इंजॉय करते हैं।

मैंने कहा ओजी गाना याद आया, यही पूछ रही थी ना आप अपने ओजी से। ये शादी के बाद एजी ओजी बन जाते हैं जी। तो मैं वेदिता आपका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ उस गाने के साथ आप लोगों का पुराना रोमांस भी जाग गया होगा, कुछ याद आया, कभी आपने इनके लिए गाना गाया होगा, कभी इन्होंने आपको जवाब दिया होगा, जवाब में कहा दिया होगा, ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ इन पुराने गीतों का असर आप पे ज़रूर होता है।

तो दोस्तों पुराने गीतों का ये सफ़र हमें यही याद दिलाता है कि जो बीत जाता है वो यादें बन जाती हैं और जो पल हमारे साथ हैं अगर इसको हम अच्छे से जिए तो ये खूबसूरत यादें बन जाती हैं। इसीलिए टेंशन न लेने का न देने का, ज़िंदगी मिली है छोटी सी, इसको जीना है, प्यार से जीना है और बाकी और कुछ नहीं करना। आप गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, यह है आपका सुनहरे पल।

तो दोस्तों सुनहरे पल प्रोग्राम यहां पर समाप्त होता है। ओ माय गॉड इतनी जल्दी, हां हां जाने का टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूं आपने हमारे आज का सिलेक्शन पसंद किया है ना। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम बहुत जल्द ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: आईसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: दिल से कभी पूछा ही नहीं कैसे ये भला चके रुका।